8 बिलियन चेहरे हैं। 8 बिलियन चेहरे के माने 8 बिलियन थिंकिंग। हर एक के सोचने का अंदाज अलग है, हर एक यूनिक है। ये भी खुद मौजूदा है कि उस फैक्ट्री से जो भी निकलता है यूनिक निकलता है। एक अजीब गरीब है, इंसान का वजूद खुद अल्लाह के वजूद की दलील है, अल्लाह की समादियत की दलील है, अल्लाह की वहदानियत की दलील है। आज की साइंटिफिक दुनिया ने बताया फिंगर प्रिंट के से मुतल्लिक, न सिर्फ फिंगर प्रिंट बल्कि आज ये भी बता रहे हैं आंख, अगर एग्जाम आप आज मालूम है कि आपको सिर्फ एक खोफल ऐसा भी आ गया, सिर्फ आंख लगाइए तो आपका खोफ खुल जाता है। तो क्या माने हैं, यानी हमारी न सिर्फ उंगलियों के ये जो प्रिंट्स हैं ये मुख्तलिफ हैं, आँखों के प्रिंट्स भी मुख्तलिफ हैं। सोच यानी माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं, सोच नहीं सकता इंसान कि इतने 8 बिलियन इंसानों के इतने मुख्तलिफ। तो यही कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह ये कह रहा है कि तुम मुख्तलिफ हो, तुम लोग एक स्टेज में आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारा, तुम एक ही एनर्जी से एनर्जी लो। तो बहुत अच्छी तरह से ये एनर्जी जो है आपको 10 जगह से नहीं आ रही है, एक ही जगह से आ रही है। इस बात की इशारा है कि तौहीद एक ही है, 10 नहीं हो सकते, 10 एनर्जीज नहीं हो सकते। लाजमी है कि उस एक से एनर्जी लो तो फिर तुम्हारे पास जिंदगी में रोशनी मिलेगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। इबारत न शत्ता हुस्न कवाहिद कुल्लुन, सारी हमारी बातें अलग अलग हैं। हिंदू कुछ कहते हैं, मुसलमान कुछ कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कुछ कहती है, जुडाइज्म कुछ कहती है, मैनी मैनी मजाहिब हैं दुनिया में। ये हमारे अलग अलग तौर तरीके हैं, मगर उसका हुस्न एक ही है, अल्लाह की ब्यूटी एक ही है। सब लोगों के इशारे अलग अलग हैं, सब लोग जो इशारा करें उसी एक ब्यूटी की तरफ। इसीलिए इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है कि दूसरे मजाहब को बुरा बोलो। इस्लाम ने हक नहीं दिया है। कुरान की इसी सूरह इनाम की आयत है, 108 आयत है, वला तसुब्बु लदीना यदउना मिन दुनिल्लाह, जो हल्ला अल्लाह से हटकर किसी और को पुकारते हैं उनको बुरा मत बोलो। क्या माने हैं, इसलिए कि बुरा बोलने का हक नहीं है, ना बुरा बोलो। अगर बुरा बोलोगे फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो अल्लाह को बुरा बोलेंगे। अगर तुम दूसरे मजहब को बुरा बोलेंगे तो क्या करेंगे वो लोग, पलट कर, इसलिए कि उनको भी राइट है। इसलिए इस्लाम ने कभी भी किसी भी मजहब को कंडेम नहीं किया। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वा, सूरह इसरा की आयत है, ये वो कुरान है दी परफेक्ट पैथ की तरफ इशारा करता है। इन्हें दूसरे को मना नहीं किया, इसकी खसूसियत बताया, इसकी इम्पोर्टेंस बताया, इसमें ब्यूटी बताया। मैं मिसाल दूंगा तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। देखिए बिजनेस हम भी कर चुके हैं, बिजनेस माशाल्लाह यहाँ पर आप लोग बिजनेस करते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन आपने पैदा किया, आपने बनाया एक प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन मार्केट में भी मौजूद है, अगर ये बोलें कि सारे प्रोडक्शन मार्केट के अच्छे नहीं है, मेरा अच्छा है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो कैसे प्रोडक्शन को चलाएं, कि मेरे प्रोडक्शन की खसूसियत यह है जो दूसरे में नहीं है, यानी मेरे प्रोडक्शन में ये बातें हैं जो दूसरे प्रोडक्शन में नहीं है। मसलन आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं नेचर की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और केमिकल से दूर हटते चले जा रहे हैं। ये मेरा प्रोडक्शन जिसमें केमिकल्स नहीं है। जितना आप अपने प्रोडक्ट की अहमियत को समझाना हो तो खसूसियत को समझाइए। इसी तरह से अगर अहले बैत को हम चाहते हैं, अहले बैत के फजाइल को समझाइए, दूसरे को बुरा कहने की जरूरत। सलवात पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद वाजिल फर। जितना हम लोग इस चीज को समझते चले जाएंगे उतना ही हमारा दीन बहुत ही लतीफ होगा, लोगों से इंटरेक्शन में आसानी होगी। ये बहुत ही अहम मसला है। आज का जो मसला मुझे बयान करना है वो मसला है फैमिली टाइज, फैमिली टाइम। अगर मेंटल हेल्थ को अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं हम लोग, जहनों को और अपनी सलाहियत को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, कि इंसानी अकदार को लाना चाह रहे हैं, ये दो चीज़ें।

बाय ऑल्टरिंग इंटेंशन उसका खाना भी वाजिब बना सकता है, उसका सोना भी वाजिब बना सकता है। कैसे भाई? ये समझ में आने वाली बात नहीं है, मैं एक मिसाल दूंगा तो समझ में आएगी। वुदू बजात खुद वाजिब नहीं है, वुदू बजात खुद इन इट्सेल्फ, अगर आप नमाज से चार घंटे पहले वुजू करना चाह रहे हैं, अभी मजलिस में आने से पहले वुजू किया तो सुन्नत वुजू है, खुद वाजिब नहीं है। नमाज का जब मुकदमा बन जाता है तो वाजिब हो जाता है। तो ये नतीजा निकला, जो भी वाजिब का मुकदमा बनेगा, वाजिब का प्रीफेस बनेगा, वाजिब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी जो चीज वाजिब एक्ट का ये क्या हो जाएगा, मुकदमा बनेगा, वो खुद वाजिब हो जाएगा। तो अगर मैं सोने से पहले ये नियत करूं, अगर ना सोऊं तो मैं नमाज शब को नहीं उठ सकूंगा, ना सोऊं तो फज्र को नहीं उठ सकूंगा, ये मेरा सोना वाजिब हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरी नियत जो है सुबह की उठने की है। देखिए, सिर्फ नियत से सरकार ने फरमाया ऑल्टर योर इंटेंशन, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा उठना बैठना सब इबादत हो जाएगा सिर्फ इंटेंशंस को ऑल्टर करने से। तो इसी तरह से खाना, मालिक दस्तरखान पे बैठा हूँ, ये दो लुकमे नहीं खाऊंगा, मुझ में तेरी इबादत की ताकत नहीं रहेगी। तो मालूम हुआ ये दो लुकमे खाना क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा, इसलिए कि मुकदमे वाजिब है। इंटेंशंस के जरिए से हम लोग अक्सर आमाल को वाजिब कर सकते हैं, हत्ता मजलिस में जाना क्या है, सुन्नत है। लेकिन आप ऑल्टर करें इंटेंशन को, ये मजलिस में जा रहा हूं मैं इल्म के सीखने के लिए, तो आपका आना वाजिब हो जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद जरा, आप जब भी आइए तो जरा खिसक जाइए ताकि पीछे बाद में आने वाले मारा बॉम्बे की ट्रैफिक कभी कभी। वैसे हम इतने खतरनाक नहीं कि मैं करीब भी ना आए हमारे यहाँ। जी हाँ, सलावत पढ़िए मन मान। तो सरकार मौला ने क्या फरमाया, डे को त्री हिस्सों में डिवाइड करो। इसी त्री हिस्सों में डिवाइड के लिए, तो अगर हम इबादत को सिर्फ नमाज में लाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इबादत क्या है, एक जुमला मैं कहता हूँ, याद रखिए, ये पेटेंट जुमला है, हुदूद शरीयत में उठना भी इबादत है, बैठना भी। हुदूद यानी अंडर द लिमिटेशन ऑफ द शरिया, उठना भी इबादत है, बैठना भी इबादत। अब आइए फैमिली टाइम एंड फैमिली टाइज। हमारे मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा आजकल खुसन डिजिटल वर्ल्ड में, ये फैमिली टाइज भी ख़त्म हो रही हैं, फैमिली टाइम भी ख़त्म हो रहा है। इस हदीस को एक्सपैंड किया है बाबुल हवाइद इमाम मूसी काज़िम अलैह अफ़ज़ल इमाम ने चार हिस्सों में तकसीम किया है। फोर्थ हिस्सा काहे के लिए, फैमिली टाइम के लिए, जो मौला ने इबादत कहा है उसको और चार हिस्सों में तकसीम करके ये बताया कि फैमिली के साथ अपने टाइज को बरकरार रखना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हमारी ज़िंदगी का मेरा अपना तजुर्बा है, आप लोगों से भी गुजारिश, मैंने तरबियत औलाद के सिलसिले में बहुत बहस की है इस सिलसिले में, वो है सुबह में नाश्ते के मौके पर, बाप भी भगदड़ में है, जाना है जॉब पे, जाना है काम पे, जाना है बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, दोपहर में भी बच्चे शायद स्कूल से कॉलेज से नहीं आए हैं, मगर एक टाइम ऐसा है जो फैमिली टाइम होना चाहिए, वो कौन सा है, डिनर टाइम। डिनर टाइम मुकर्रर कर लें, आप कोशिश ये कर लें अर्ली डिनर करें, लेट डिनर अच्छी चीज़ नहीं है। इस्लाम ने अर्ली खाने को कहा है, अर्ली सोने को कहा है, सुबह अर्ली उठने को कहा है। न सिर्फ इस्लाम ने, ये चरण ये परन देखिए, जैसे ही सूरज गुरूब होता है न कौओं के काए की आवाज़ आती है न चिड़िया के चहकने की आवाज़ आती है, लेकिन यही चिड़िया यही कौवे फज्र की नमाज के वक्त उठ के बताते हैं। ये नेचर है। इंसान क्या कर रहा है, हमारी जिंदगियां हो गई 12 बजे 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, सुबह कब तक सो रहे हैं, अल्लाह के बना है। तो फज्र भी कज़ा हो रही नहीं, मान खुदा ना खासा किसी ने किए, किसी ने मौला ने फरमाया सारी कायनात को सारी ग्लोब को अगर सोना बना दिए जाए और इसके मुकाबिल में दो रकात फज्र की है तो सोना एक तरफ है, दो रकात नमाज़, इतनी अहमियत है फज्र की। तो इसको कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट।

टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है इंसान की जिंदगी में, और फैमिली मैनेजमेंट सबसे अहम है। तो शाम का डिनर अगर मस्जिद करीब है आप जब पैलेस में आ जाइए नमाज पढ़िए, अगर करीब नहीं है तो हर घर में जमात होना चाहिए। शौहर आगे बढ़े, बीवी और बच्चे खड़े रहें। अगर बीवी शौहर को आदिल समझती हो एक चैलेंजिंग इशू है, इंशाल्लाह आपकी अदालत बढ़ते चले जाए, एक दिन आप पढ़ते जाइए इंशाल्लाह आपको आदिल समझेगी। तो आप आगे बढ़ें, नमाज जमात पढ़ें। नमाज जमात के बाद अगर हो सके तो उसी मुसल्ले पर या टेबल पर एक आयत बाप पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत माँ पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत बेटा पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत बेटी पढ़े तर्जुमे के साथ। आप उसका इम्पैक्ट अगर देखना है तो एक साल बाद देखिए, घर में नूर बरसेगा। अल्लाह वलीयुल्लदीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर, ये हकीकत है। तो फैमिली टाइज, फैमिली टाइम, सलावत पढ़िए मोहम्मद फैमिली टाइम्स के माने यह हैं कि मैं जवान बच्चों से ख्वाहिश करता हूँ आप लोग 24th दुआ ऑफ इमाम सज्जाद पढ़िए। जवान बच्चे कौन सी दुआ? 24वां। किसके लिए? वालदैन के लिए। वालदैन की इम्पोर्टेंस को समझना है तो इमाम ने उसमें ओपन अप किया है कि हु आर वालदैन, हु आर पेरेंट्स। कुरान ने अगर अल्लाह की इबादत के बाद जिस चीज का तस्करा किया है वो क्या है? अनिश्कुर ली वले वालदैन, मेरा भी शुक्रिया अदा करो तुम्हारे वालदैन का भी। तो अल्लाह अपने इबादत के बाद जिस चीज को ज्यादा अहमियत देता है वो वालदैन। हदीस में है कि वालदैन की तरफ मोहब्बत से देखना एक हज और एक उम्रे मकबूल की तरह है। हज उम्रे मकबूल, मकबूल के माने क्या हैं? कबूल शुदा। हमने हज किया, बहुत से लोगों ने माशाल्लाह हज किया, जिनको जिन्होंने नहीं किया अल्लाह ताला ले जाए, वाजिब जल्दी जल्द से जल्द अदा कीजिए, देर मत कीजिए वाजिबात में, खुसूसन हज में देर मत करें, खुद जवानी में करें, जल्द से जल्द करें। ठीक, अब हज को जाइए, हज को जाने के बाद वापस आने के बाद सिर्फ भीख मांगते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अमाल कबूल कर लें। नहीं मालूम कौन से अमल सही हुए, कितने पेचीदा अमाल हैं, सिर्फ अल्लाह से भीख मांगना है कि कबूल करे। लेकिन ये हदीस ये कह रही है माँ बाप की तरफ मोहब्बत से देखना सिर्फ हज का सवाब नहीं है, सिर्फ उम्र का सवाब नहीं है, मकबूल हज उम्र का सवाब। यानी कितनी अहमियत है पेरेंट्स की। क्या है ये? फैमिली टाइज। इस्लाम जो है फैमिली को नितिन करता है, एक दूसरे को मिलाता है, कभी जुदा ना हो। आज की दुनिया में क्या हो गया, आज इंडिया में भी बला शुरू हो गई, जैसे जैसे ज़ईफ हुआ बाप का वैसे हाउसेस मौजूद हैं, वहाँ हवाले कर दो, हफ्ते में एक मरतबा जाओ संडे वगैरह जी, या और मुलाकात करो बाप से। ये नहीं है खिदमत। कुरान ये कहता है कि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं, वाखफिद लहुमल जनाहुज़्ज़ुल, अपने आप सूरह इसरा की आयत है, अपने आप को हम्बल मीक, इन स्प्रेड योर विंग्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, इन कुरान के जो अल्फाज हैं, तुम अपने आप को जलीलाना खिदमत में माँ बाप के लगा दो और दुआ करो रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बहुत अजीम है माँ बाप। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला चौबीसवीं दुआ इमाम सज्जाद की किसके लिए? वालदैन के लिए। 25वीं दुआ जो जो लोग जवान बच्चे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, वो है दुआ ले उल्दे औलाद के लिए दुआ। इसमें मौला ने गाइडलाइंस बताई हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इन रिगार्ड्स टू दी चिल्ड्रन, यानी माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों की परवरिश में। ये दोनों दुआएं फैमिली टाइम्स और फैमिली टाइम दोनों को आप देखना है तो इसको दोनों मिला देते हैं। अगर इस इंसान के फैमिली टाइम्स अच्छे हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है और वो कभी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम में कभी जाता नहीं है। उसका इम्पैक्ट खिदमत, माँ बाप की खिदमत, उसका इम्पैक्ट बच्चों की परवरिश की खिदमत का इम्पैक्ट इंसान के बिहेवियर पे होता है और उसके असरात उसके आमाल पर भी होते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद।

एक चीज और बता दो यहां पर फैमिली टाइज से मुतालिक, अल्लाह की जात के कितने नाम है कुरान में, सिफात कितने हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह 99 है, 99 एट्रीब्यूट्स कहां से हैं, ये कुरान में मौजूद है अल्लाह के नाम। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के लिए नेम्स हैं, पुकारना हो तो उसी के नाम से पुकारो, बेहतरीन तस्बीह अगर हो सके तो अल्लाह, ऑनलाइन हो भी है अब एक दिन चंद दिन सामने रखे पढ़ते जाइए, आपको अल्लाह के पूरे नाम याद हो जाएंगे। एक तस्बीह में कितने दाने होते हैं, 99, 33, 33, 33, बीच में दो इमाम होते हैं इशारे के।

0: तो अल्लाह ऑनलाइन हो भी है, अब एक दिन चंद दिन सामने रखे पढ़ते जाइए, आपको अल्लाह के पूरे नाम याद हो जाएंगे। एक तस्बीह में कितने दाने होते हैं? 99, 33, 33, 33, बीच में दो इमाम होते हैं इशारे के लिए। और जो लोग तस्बीह फातिमा ज़रा पढ़ते हैं 99, 33 के बाद एक उसको मिला करके 34 हो जाएंगे, उसके बाद 33, 33, 33, 33, 33। ये कहाँ से आई है? अल्लाह के नाम 99 हैं, इन सिफात से पुकारो। मगर अल्लाह को सबसे ज्यादा उसका कौन सा नाम पसंद है? खुद उस जात को कौन सा नाम पसंद है? कुरान से पूछिए, रहमत ज़ाते परवरदिगार की, सबकत रहमत हो गदबा, अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि लोग डर के उसके सामने आए, अल्लाह को ये पसंद है कि मोहब्बत से सामने आए। इसीलिए अल्लाह ने शुरू कैसे किया? बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। हालांकि कह सकता था बिस्मिल्लाहिल कहारिल जब्बार, क्या कर लेते अगर कहता कि मैं तुम्हारा कहार भी हूँ जब्बार भी हूँ, नहीं कहा। अल्लाह को पसंद है रहमान और रहीमियत। फैमिली टाइज में जो सबसे अहम है ये लीजिए आयत सूरह रोम 30th सूरह आयत नंबर 21, बहुत ही मशहूर आयत है। वमिन आयात ही अन खलक लकुम मिन अनफुसकुम अजवाजन लितस्कुनु इलैहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी बहनें भी सुन रही हैं, बेटियां भी सुन रही हैं, बुजुर्ग भी सुन रहे हैं। हम लोग दीन के इन उसूलों से यानी दूर हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमें जो है किसी और दुनिया में रखा गया है। वो दुनिया यह है कि तुम मलक से या अली मदद बोल दो, दो चार आंसू बहाओ, जन्नत तुम्हारी है। जन्नत में जाना कमाल नहीं है, लिख के रख लीजिए, जन्नत में जाना कमाल नहीं है, इस घर को जन्नत बनाना कमाल है, इस दुनिया को जन्नत बनाना कमाल है। कैसे हो सकता है? उसूल तरबियत दीन। देखिए कुरान की आयत बहुत ही खूबसूरत है। वमिन आयात ही अल्लाह की निशानी, वन ऑफ द साइन ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अन खलक लकुम मिन अनफुसकुम अज़वाजन, अल्लाह ने इंसानों से शादी करने को कहा। किससे शादी करो? जिन्नात से शादी करो। कहा इस्लाम नहीं हो सकता, जिन्नात जाए पहचानते भी नहीं। कहा इंसानों से ही शादी करो, ठीक। वजअला बैनकुम, दो चीजें बहुत ही अच्छी तरह से, फैमिली टाइज, मवद्दत व रहमत। मवद्दत की लफ्जियों के लिए कोई अजनबी लफ्ज नहीं है। कुल ला असअलुकुम अलैहा अजरन इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा, अहले बैत से मोहब्बत नहीं, क्या करो? मवद्दत करो। क्या मवद्दत के माने क्या हैं? ये नहीं कि मैं बहुत चाहता हूँ, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव, नहीं, सुबह से शाम तक आई एल यू आई एल यू आई एल यू, लेकिन उसका कोई ख्याल ही ना करे तो ये लव नहीं होता। लव क्या है? यू हैव टू केयर अबाउट द पर्सन टू होम यू लव, जिससे मोहब्बत करते हो उसका ख्याल भी रखो, उसको कहते हैं लव। मवद्दत के माने हैं अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चलो तो मोहब्बत है, नहीं ये कैसे हो गजवारूँ और एक गज ना फाड़ो। बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई और सांस लाई पूरी थान को वार करने के लिए, उससे सदका देने के लिए, जब काटने का मसला आया एक गज भी नहीं काटा। हम भी आले मोहम्मद से बहुत मोहब्बत करते हैं। आले मोहम्मद पूछते नमाज कहाँ है, रोजा कहाँ है, हज कहाँ है, जहाद कहाँ है, तुम्हारी फैमिली टाइज कहाँ है? अगर ये नहीं है तो हमारी मोहब्बत नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। अच्छी बातें हो रही कि नहीं है? ये इतने नारे क्यों नहीं लग रहे जी?
1: नारे हैदरी,
0: कोई समझेंगे मौलाना ने बंद करा दिया है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। देखिए बहुत अच्छी तरह से समझिए, फैमिली टाइम्स, फैमिली टाइम, फैमिली टाइम्स कैसे हो सकते हैं? प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया में बेड पे दोनों सो रहे हैं जी, एक ही बेड है, क्लोजेस्ट कौन होना चाहिए? कुरान ये कहता हुन लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, बीवी तुम्हारी कौन है? लिबास है तुम्हारा। अजीब गरीब लफ्ज है कुरान की अल्फाज, यानी बहुत काम करने की जरूरत है। मियाँ और बीवी कौन है? लिबास है। लिबास के माने क्लोजेस्ट थिंग अगर कोई है तो लिबास है।

बताया क्या आ जेल, सेक्लूजन फ्रॉम दिस सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी से अलग कर देते हैं, कमरे में लगा देते हैं, खाना है वहाँ पर, पानी है, खेलने के लिए भी टाइम देते हैं, जाइए भाइए भागिए, सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्यों जेल जेल है? क्या उसको सोसाइटी से जुदा कर दिया, तवज्जो, सोसाइटी से जुदा होने की वजह से जेल कहते हैं। ये कैसा इंसान है सोसाइटी में रह करके जेल में है जी? अरे भाई बीवी बच्चे साथ हैं, साथ क्यों नहीं रहते तुम, किसी और के साथ हो, बेड में है यार, इतने करीब कोई करीब नहीं हो सकते। कुरान कह रहा है कि लिबास है, एक मियां बीवी लिबास है, वो भी किसी से बात कर रही हैं, ये भी किसी से बात कर रही जी। देखिए डिजिटल वर्ल्ड कितनी है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत बात कर रहे हैं, हो सकता है बहन से बात कर रहे हो सकता है दोस्त सहेली से बात कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग, मगर वो बेड इसके लिए नहीं है, बेड है आपस में एक दूसरे के, ये इंसान रिलैक्स होता है थिंकिंग वाइज और उसके अफकार में सुकून हासिल होता है। वह जाला बैनको मवद्दतों व रहमा, अल्लाह ने रहमत ले तस्कुनु इलैहा, सुकून का लफ्ज है, या नमाज में सुकून है या मियां बीवी के दरमियान अच्छे अखलाक में सुकून। दुनिया ऐसी, अगर इस सुकून को हासिल करने के बाद नामुमकिन है कि इंसान इस प्रॉब्लम में दाखिल हो, जो प्रॉब्लम जिसका जहर बहस हम लोग कर रहे हैं। सलवार पढ़िए, अज्जिल फरज। इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन जात कौन है? कुरान ने नमूना पेश किया, एग्जाम्पल, आइडियल, सूरह अहज़ाब जिसमें आयत तथहीर है उसकी 21st आयत है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? तुम्हारे आइडियल रसूलुल्लाह की जात। यानी बेहतरीन टोटल नमूना अगर देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह की जात में देखिए। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रसूलुल्लाह की एक्टिविटी देखें, मैं कभी कभी देखता हूँ उनकी जो बिजी लाइफ को, इम्पॉसिबल है कि एक इंसान इतने काम कर दे 63 ईयर्स में जितना काम सरकार ने किया है पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे इसके माने क्या है? ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, फैमिली टाइम ऑर्गेनाइज इस तरह से किया, एक जिंदगी का एक लम्हा भी बेकार नहीं गुजरा। जब मसरूफ हो गया तो फिर उसे क्या परवाह है कि क्या हो रहा है। इसीलिए ऑलवेज जहां इबादत के मौके पर इबादत, जहां जंग के मौके पर जंग। जब फैमिली टाइम आया, सरकार ने बताया कि मैं तमाम जिम्मेदारियों के बाद भी मैं अपने घर का ख्याल करता हूं। इतनी जिम्मेदारियां रखने के बाद में अपनी फैमिली को मैंने नेगलेक्ट नहीं किया है। तो कोशिश ये करें कि ये फैमिली टाइम और फैमिली टाइज। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, वाजिल फरज। उसके बाद आइए मौलाए कायनात की जिंदगी। मौलाए कायनात की इतनी मसरूफ जिंदगी है और उसके मुकाबले में शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि, इम्कान ही नहीं है कि इतनी पावरफुल घराना जिनके पास मलक आते हों उनसे काम लिया जाए ना। खुद करके बताया, खुद तरबियत की, बच्चों की औलाद खुद तरबियत की। ये कौन है जो मलिकतुल अरब नहीं है, कायनात की मलिका है। शहजादी कौन है? इनके माने ये हैं कि वो सिर्फ मदीने से महदूद नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब हजरत मरियम का तस्करा आया तो शहजादी के सिलसिले में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अम्मा इब्नती सैयदत निसाउल आलमीन, यकीनन अल्लाह ने मरियम को चुना है लेकिन मेरी बेटी सारी कायनात की औरतों की सरदार जी। इतना बड़ी फजीलत, खामोश क्यों? क्या माने सरदार के? शी इज द लीडिंग पर्सनालिटी। क्या माने है? क्या माने, मफहूम क्या है समझना है। माने यह है कि अगर कोई गाइडलाइंस कोई औरत चाहती है, शौहर के साथ कैसे रहना है फातिमा को देखा, बच्चों की तरबियत कैसे करना है फातिमा को देखा, दूसरों के साथ कैसे उठना बैठना है फातिमा को देखा। शहजादी मरकज है तमाम

0: इंसानी रिश्तों के लिए, और इस रिश्तों को समझने के लिए इससे बेहतर कोई ज़ात नहीं। इसीलिए अल्लाह ने, अल्लाह से जब जिब्राइल ने पूछा वमन तहतल किसा, अल्लाह ने तारुफ नहीं करवाया रसूलुल्लाह हैं, उनकी बेटी है, उनके दामाद हैं, उनके नवासे हैं, बल्कि तारुफ कराया हम फातिमा व अबूहा व बालुहा।
1: मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार।
0: उम्मीद है कि हम लोग इस रुख से भी दीन को देखें। दीन जो हम लोग एक ही टनल विजन हमारा रह गया है, बहुत वास्ट है दीन। इस वास्टनेस को समझें और इसको ग्रास्प करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए बाप नाना जान सबके ऊँट हैं, हमारे ऊँट नहीं हैं। ये नाना नवासे की मोहब्बतें देखिए, सरकार ने कहा हाँ मैं खुद तुम्हारा ऊँट हूँ। रसूल अकरम रहमतुल्लिल आलमीन, क्या है फैमिली टाइज है। यहाँ पर हदीस किस्सा में बेटा आ रहा है अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, जवाब में वालेक सलाम नहीं है, वालेकुम सलाम या कुर्रता आईनी व थमरता। कितने मरतबा पढ़ते हैं हम दुआ, हदीस के साथ बेहतरीन पावरफुल है। हर घर में हर रोज मुमकिन हो सका, नया घर लिया, नया बिजनेस शुरू किया, बेहतरीन चीज़ जो है हदीस के साथ है जी। क्या है उसमें, सिर्फ सलाम नहीं है जवाब में, वालेकुम सलाम या कुर्रता आयन और था मारा तफवाद, मेरे आंखों के नूर मेरे दिल के मेवे। इससे क्या हो रहा है, फैमिली टाइज मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। मियां बीवी के दरमियान भी हमारे पास, हम लोग जो जिस माहौल में रहते हैं, इंडियन माहौल है, इंडियन कल्चर है, हमारे पास एक्सप्रेशन ही नहीं होता। एक साहब बोलते हैं क्या, उन्होंने कहा कि मौलाना मैं 70-80 साल का हो गया, अभी तक मैंने कभी आई लव यू नहीं बोला जी मैम जी। मैंने कहा माशाल्लाह, नहीं ये वेस्टर्न कंट्री या ईस्टर्न कंट्री का मसला नहीं है। 1400 साल पहले इमाम सादिक अलैहिस्सलाम قول الرجل لامرأته انا احبك, मैंने इससे पहले जुमला कहा, ये बहुत ही अहम जुमला है, इस पर काम होना चाहिए। औरत इमोशनल पहले है, रैशनल बाद में, मर्द रैशनल पहले है, इमोशनल बाद में। अल्लाह ने क्यों रखा, ताकि बच्चों की परवरिश में आसानी हो, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने ये पहले जज्बा रखा, बाद में अकली बात। इसीलिए ये हदीस, ये रिवायत बहुत ही अहम है, अगर हम लोग जरा इस पे काम करें। सलवात पढ़े मोहम्मद السلام عليك يا أمة وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي. اور جہاں پر مولا علی آ رہے ہیں ریسپیکٹ بھی اسی طرح کا ہے، مولا علی کو وہی سلام کا جواب، طریقۂ سلام بھی وہی ہے، سلیقہ ہمارے گھروں میں جو ہے ہمارے پاس کلچر میں ایکسپریشن کا نہیں ہے۔ دیکھیے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب مرد کہتا ہے آئی لو یو، میں نے کراچی میں تقریباً آئی تھنک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 30 years پہلے جب مجلس پڑھا تھا، تو مجلس کے بعد ایک ہنگامہ ہوا تھا۔ آج کل تو میں بول لے رہے ہیں سب کچھ، یہ آیا ہے کینیڈا سے باقری، یہ آئی لو سکھا رہا ہے، یہ ارے بھائی میں نہیں سکھا رہا ہوں، چھٹے امام 1400 سال پہلے سکھا رہے ہیں۔ مرد جب کہتا ہے بیوی سے آئی لو یو، لم یذهب من قلبها ابدا، اس کے دل سے کبھی نکلتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آئی لو یو کہیے، وہ 3 مہینے خدمت کرے گی، اور ایک مرتبہ ذرا سا آپ سخت رہیے تو پھر 3 مہینے سلوات پڑھی محمد ایرانی کلچر میں۔ میں نے ایک دیکھا، چونکہ ہم سے رابطہ رہ جاتے آتے ہیں، رہا ہوں میں قوم میں رہا ہوں، کئی فیملیز ہمارے فرینڈس ہیں، ان لوگوں کے پاس ایکسپریشن بہت اچھے ہیں، ہمارے انڈین کلچر میں ایکسپریشن وہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے بیوی نے دسترخوان بچھایا، فوراً دستش مادر نہ کرنا، اللہ آپ کے ہاتھوں کو تکلیف نہ دے۔ حالانکہ ورڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ورڈنگ سے سب کچھ ہوتا۔

एक जुमला इंसान को पूरे दिन भर की थकान को दूर कर देता है। हमारे पास जरूरत है दीनी कल्चर को एक्सपोज करें, उसको अपने जिंदगी में लाएं। ये तमाम हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ हम करबला में भी देखते हैं कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जुमला मैं बहुत कहता हूँ, इस पर बहुत काम की ज़रूरत है। वेल ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशन का नाम है करबला। वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशन, इसका नाम है करबला। शब आशूर इमाम हुसैन ने रात को तीन हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। एक हिस्सा किसके लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। एक हिस्सा किसके लिए? रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए। क्या माने भाई? फैमिली टाइम्स, फैमिली टाइम। करबला में एक पूरा पोर्शन रात का यह था कि रिश्तेदारों से मुलाकात, और थर्ड पोर्शन में मिलिट्री में तैयारी, फौज की तैयारी मैदान जंग में जाने के लिए। यानी कारजार में, मैदान कारजार में भी फैमिली को कभी भुलाना नहीं। मेरा जॉब ऐसा है, मेरी बिजनेस ऐसा है, आई एम बिजी, आई कैन नॉट डू दिस, नहीं। फैमिली को कभी, फैमिली टाइज को तोड़ना नहीं चाहिए। जितना आप फैमिली से करीब होंगे उतना हेल्थी औलाद भी होगी, उतनी ही हेल्थी सोसाइटी भी होगी। जितना फैमिली टाइज से हट जाएंगे हमारी ज़िंदगियों में परेशानी होंगी। मौला इमाम हुसैन दूसरे इबादत का हिस्सा गुजरा, दूसरे हिस्से में एक एक खैमे के सामने खड़े होते हैं। मैं उमूमन कोशिश करता हूँ कि करबला को, जहाँ गिरिया हमारे साथ है, नेचुरल है, व्हेन वी हियर द ट्रेजेडी, इट्स ये इम्कान ही नहीं कि इंसान गिरिया ना करे, लेकिन हम लोग सबक हासिल करें करबला से। करबला भी एक बहुत बड़ी दरसगाह है। सिले रहम को शब आशूर समझना है। रिवायत में है कि शहजादी मौला इमाम हुसैन जनाब जैनब के खेमे के सामने खड़ी, जैनब आना मोहम्मद को बिठाए हुए ये कह रही कि देखो देखो कल तुम्हारे मामू पर बहुत बड़ा इम्तिहान है जी। बच्चों ने कहा मदर एग्रह में क्या करना होगा? कहा तुम्हें जानों को देना होगा, फिर एनकरेज करें तुम्हें मालूम को तुम कौन हो? तुम जाफर तौबा तैयार के पोते हो, अली मुर्तजा के नवासे हो, और तुम्हारी मदद की तुम्हारे मामों को ज़रूरत है। मौला इमाम हसन ने सुना, माँ बच्चों को बिठा कर ये कह रही है कि कल तुम मौत के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाओ। माँ कह रही है कि तुम तैयार हो जाओ। आगे बढ़े, उम्मे फरवा कासिम को बिठाए हुए, बेटा कासिम कल चचा जान पर रो रहे थे। आसान दिन नहीं है, कल अपनी जान को कुर्बान कर देना। हजरत कासिम कहते मादर ग्राम में इजाजत दिला दीजिए, मैं बता दूंगा। एक एक खैमे के सामने जाते हैं। अली अकबर 18 साल पालने वाली माँ, अंदाजा नहीं कर सकते कोई इंसान। ऐसी माँ, हर माँ की ख्वाहिश यही होती है बच्चे फलें, बड़ें, आबाद रहें। कोई बच्चे को कुर्बान नहीं करता, लेकिन करबला की माओ ने क्या फितरत को बदल दिया था? ये क्या कर दिया कि मौला इमाम हुसैन के आंखों से आंसू जारी हुए, आसमान की तरफ सर उठाया, परवरदिगारा ये कैसी माँ है? ये कैसी माएँ हैं जो अपने बच्चों की सलामती नहीं चाह रही हैं, बच्चों को कुर्बान कर रही हैं, ये कैसी माएँ हैं? आगे बढ़े तो एक मर्तबा एक बीपी की आवाज आई, मगर कोई सामने बच्चा नहीं था। समझ गए उम्मे कुलसुम है, वो रो रही है। समझ गए इमाम हुसैन कि उसका कोई बेटा नहीं है। अब्बास के पास आए, अब्बास जाओ जरा बहन को समझा दो। हजरत अब्बास उम्मे कुलसुम के सामने बैठ गए, हाथों को जोड़ा, शहजादी क्या बात है, क्यों गिरिया फरमा रही है, क्या आपकी परेशानी है? कहा उम्मे कुलसुम ने, कल भाई जान पर इम्तिहान का वक्त है, हर शख्स अपने बच्चों को

0: ये क्या हो रहा है? शोर की आवाज कैसी है? इस शहर में क्या हो रहा है? बताते क्यों नहीं? जिंदानबान, ओए जिंदानबान, जिंदानबान,
1: ए निगहबान, इधर आओ।
2: निगहबान, जिंदानबान,
1: निगहबान,
2: ए जिंदानबान,
0: क्या हो गया है? क्यों शोर कर रहे हो?
2: हो रहा है।
0: ये रोने की आवाज कैसी है?
3: बताओ क्या हुआ?
0: अपनी जगह पे वापस चले जाओ। ये रोने की आवाज कैसी है?
2: आते क्यों नहीं हो?
3: बोलते क्यों नहीं हो? बताओ क्या हुआ?
4: जानना चाहते हो ना? लो सुनो, बनी हाशिम सोग मना रहे हैं। ये आवाज बनी हाशिम के सोग मनाने की है। हसन इब्न अली दुनिया से चले गए, वो गए।
2: झूठ बोल रहे हो।
0: खुदा लानत करे तुम पे मुनाफिक।
1: तुम झूठ बोल रहे हो हमें अजियत करने के लिए।
3: तुम हमें परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हो। सही बात क्यों नहीं बताते?
2: झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे।

ओह देखो वो आ रहे हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। मोहम्मद क्या कर रहे हो? मोहम्मद चलो हमला करते हैं।

0: जल्दी करो, आ जाओ।
1: एक एक करके यहाँ से निकलते जाओ, जल्दी चलो वरना वो हमें पकड़ लेंगे। चलो जल्दी निकलो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो।
0: वो लोग फरार हो रहे हैं, चलो जल्दी करो, पकड़ो उन्हें, जल्दी करो।
1: तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगा।

0: उधर देखो सरदार, वही लोग जो जिंदान से फरार हो गए थे।
1: उनको छोड़ो, अभी उससे बड़ा मसला भी हमारे सामने है। आज बहुत सों का खून बहाया जाएगा। ठहरो, ठहर जाओ। मैं मरवान इब्ने हकम

0: क्या हो रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? दारू खिलाफ में क्या करो? रोको ही नहीं, पकड़ो, चलो। कहाँ भाग रहे हो? हजार, क्या हो गया? क्या हो रहा है इस शहर में? हजार, ये तुम्हें क्या हो गया है?
1: ताऊन, ताऊन, ताऊन,
0: ताऊन। मत लगाओ, मत छुओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, जाने दो।
1: मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। खुदा के लिए।

0: वो है मुगैरा का खेमा।
1: वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता जब इसके इशारे से जल्लाद ने हारिस का सर कलम कर दिया था। वो मंजर सोचकर मेरा खून जोश में आ जाता है। मुगैरा, जब से मैं आया हूँ तेरा चेहरा एक लम्हे के लिए भी मेरी निगाहों से नहीं हटता। वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता जब इसके इशारे से जल्लाद की तलवार ने हारिस का सर कलम कर दिया था। वो लम्हा सोचकर मेरा
0: कि उस वाक़े की याद आती है, मैं गुस्से से कांपने लगता हूँ। जब वो अबा मोहम्मद के खैमे से निकल के मुस्कराने लगा और ना चाह कर भी वो कहने लगा कि पूरे आलम इस्लाम में अबा मोहम्मद के अलावा किसी को भी मुसलमानों के जान व माल की फिक्र नहीं है। उसकी इसी बात की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो गया।
2: हाँ इब्ने हुरैस, ये लो, ये देखो, देखो अमीर ने तुम्हारे मांगे वो जवाब में क्या लिखा है। तुम बाहर रुको। लिखा है कि दमिश्क आने का तुम्हें हक नहीं है, वहीं रहो जब तक ताऊन खत्म ना हो जाए। डरता है कि हम दमिश्क और उसके महल में ताऊन ना फैला दें। देख रहे हो कि किस तरह हमारी जहमतों का सिला देता है।
3: अब क्या करना चाहिए, कब तक हम यहां रुके रहें?
2: अंधे हो नहीं पड़ा जब तक ताऊन खत्म ना हो जाए।
3: कब तक हम यहां रुके रहें?
2: जब हमें और तुम्हें वासिले जहन्नम करेगा। वासिले जहन्नम। कल ही एक कासिद कूफा भेज दो ताकि जो वहां हो रहा है हमें उसकी खबर दे।
3: इताअत होगी।

0: कौन हो तुम?
1: ताऊन, तुम्हें जहन्नम पहुंचाने के लिए आए हैं।
0: चलो मारो।
2: ये वही चीज है जो तुम्हें बहुत पहले मिलना चाहिए थी, और मुझे भी इसका इंतजार था।

0: चलो तैयार हो जाओ।
1: हसन इब्न अली,
2: भागने ना पाए, भाग के पीछे जाओ, उनका पीछा करो,
1: जाओ उनका पीछा करो, पहाड़ के पीछे गए हैं, जिंदा पकड़ के लाना,
2: जिंदा पकड़ के लाओ।

0: खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब जब के हमारी बेयत अमीरुल मोमिनीन के साथ, जब तक मलकुल मौत हमें जहाने फानी से जहाने बाकी की तरफ नहीं ले जाता, मजबूत और मुस्तहकम है। लिहाजा मैं अवाम की जानिब से अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है कि आज हम एक अजीम शान खलीफे के वजूद से फैजयाब हों, लेकिन कल को हमारे बच्चे एक अजीम खलीफा के साये से महरूम हो जाए। खुदा की कसम ऐसा नहीं होगा, ये ऐन जुल्म है। खलीफतुल मुस्लिमीन का कोई तो जानशीन होना चाहिए। हक ये है कि दुनिया में अमीरुल मोमिनीन के इंतहाई लायक और खलफ फर्जंद से बेहतर कोई नहीं। ऐसा फर्जंद जो खिलाफत के आसमान का सूरज और खुदा का बरगुजीदा बंदा है।
1: खुदा वंदे आलम अमीरुल मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। यकीनन आज के इस दौर में यजीद से बढ़कर खिलाफत का हकदार कोई नहीं है। ए अमीरुल मोमिनीन, अपनी इस उम्मत को अपने बाद लावारिस न छोड़े।
2: खुदा का शुक्र कि उसने हमें और हमारे खानदान को मुसलमानों की बंदगी और खिदमत का मौका दिया है। यही हमारे लिए काफी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये दुनिया एक खेल का मैदान है। कसम खुदा की मैं इस शोर व फितने से आजिज हो गया हूं। हथेली भर जमीन और एक मश्क पानी चाहता हूं कि खुद अपने हाथों से चावल बोऊं, आबियारी करूं और अपनी जिंदगी इबादत में गुजार दूं। लेकिन नहीं मालूम कि खुदा ने तुम लोगों का बोझ मेरे कंधों पे क्यों लाद दिया। अपने बेटे के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने कांधों पे तुम लोगों का बोझ अब नहीं उठा सकता। काफी है, बस है।

0: क्या बात हो गई है?
1: रास्ते में कुछ लोगों ने हमला किया और बानू को तीर से हलाक कर डाला। जरूर हसन इब्न अली के साथियों का काम होगा।
0: मर गई?
1: हाँ, दोनों तीर बानू के दिल में लग गए।

0: तुम्हें उसका बेजान बदन देखना गमजदा नहीं करेगा।
1: क्या कहूं, मैंने मुर्दा लाशें बहुत देखी हैं।
0: अब इसके बाद और ज्यादा देखोगे।
1: हाँ, मैं सिर्फ अपनी लाशें का सोचता हूं तो मुझे डर लगता है।
0: मेरा लाशा?
1: हाँ, आपका लाशा भी देख के मुझे गम होगा।
0: बेचारी कितनी आरजूमंद थी, अपनी आरजू न पा सकी तुम्हारी खिलाफत।

0: नहीं देखी।
1: हाँ बेचारी, इस महल में सिर्फ उसी को ऐसी आरजू थी।
0: और मैं?
1: हाँ आपको भी आरजू है, लेकिन आप भी नहीं देख सकोगे।
2: वो आए और मुझे अपने बाप का महल दिखाए।
0: ये औरत कौन है?
3: अशस की बेटी, वही जिसने हसन इब्ने अली को जहर दिया।
0: आगे आओ देखते हैं।
2: ए बुढ़े, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे इस तरह से बात करो? मैं यजीद इब्ने माविया की बीवी हूँ, मैं ज्यादा हूँ। चलो उठो, मेरी ताजीम करो, आओ मुझे सजदा करो।
3: ये लड़की तो पागल हो गई है।
1: क्या कह रही है?
0: मुझे जानती हो?
2: तुम्हें नहीं, नहीं जानती।
0: मैं हूं माविया।
2: माविया? मैं किसी ऐसे नाम वाले को नहीं जानती हूं। नहीं, मैं सिर्फ यजीद को जानती हूँ।
1: यजीद को जानती हो?
2: हाँ मैं यजीद को जानती हूँ। काटने वाले बदशकल कुत्ते, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे हम कलाम हो? कैसी बेवकूफी के सवाल कर रहे हो? क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने शोहर को ना पहचानूं? जाओ मेरे शोहर को इत्तला करो, कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं उससे बयान करना चाहती हूँ।
0: यजीद से क्या चाहती हो?
2: वही कूजा।
1: कूजा?
2: वही कूजा जिसे अबा मोहम्मद ने पिया है। चाहती हूँ कि मैं भी उससे घूट पानी पी लूं। मैं बहुत प्यासी हूँ।
1: दीवानी है।
2: दीवानी? दीवाना तू है कि जो मुझे नहीं पहचानता? अभी तेरी मोटी मोटी आंखें निकाल लूंगी। बानो उठ जाओ, तय था कि तुम कूजा लाओगी और मैं उस कूजे में जहर मिलाऊंगी। निकालो, कहाँ छुपा रखा है वो कूजा, मुझे दे दो, मेरा मुस्तकबिल उसी से वाबस्ता है। देखा, सो रही है, वो भी ऐसे मौके पर जब मैंने फैसला कर लिया था कि उसका काम तमाम कर दूं, आंखें क्यों नहीं खोलती? बता जहर कहाँ है? मैंने तेरे दिए हुए तोहफे को हाथों में लिया और घर पहुंची और इंतजार करती रही। काफी देर उस कोने में बैठी रही और हैरत से उस तोहफे को देखती रही। तभी मैंने यजीद और माविया को देखा कि फाखरा लिबास पहने हुए हैं, मेरे इस्तकबाल को आए हैं, मेरा हाथ चूम रहे हैं। उस तोहफे में मैंने जहन्नुम को भी देखा कि जिसका दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है। जहन्नुम? मैंने सुना है कि माविया के पास जन्नत है जो अमल की जजा में दे देता है। खुदा के लिए तुम मुझसे पूछो कि मुझे अपनी जन्नत में जगह देगा? और जबकि मैंने उसकी इतनी खिदमत की है, तो क्या वो अपनी जन्नत में मुझे जगह नहीं देगा? मैंने खुदा की जन्नत के बदले माविया की जन्नत खरीदी है। क्यों, क्या मैंने अच्छा सौदा नहीं किया? मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। अबा मोहम्मद नमाज में थे, मैं मुंतजर रही देर तक। वो कमरे से निकले और मैं कमरे में दाखिल हो गई। मैंने जहर को कूजे में डाला और बाहर आ गई। यजीद क्यों नहीं आ रहा? मैं बेताब हूँ। लेकिन इस औरत ने कहा था कि यजीद मुझे अपनी बीवी बनाएगा, लेकिन झूठ कहा था। मैंने उसे शोहर के तौर पर इंतखाब किया था और अब तलाक देती हूँ। यजीद दीवाना और बदशकल है, और ये दोनों सिफात उसे विरसे में अपने बाप से मिली हैं। जब माविया बिस्तर मर्ग पर था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो यजीद खुशी से कूद रहा था। क्या ये सही है? क्या ऐसे शख्स पर जो अपने बाप की मौत पर खुशियां मना रहा हो एतमाद किया जा सकता है? या मुझ जैसी जिसने अपने शोहर को जहर दिया है, उम्मीद रखी जा सकती है? वो भी ऐसा शोहर जो आलम का सरदार था।

0: जिसने माविया को अपनी गुलामी के लिए भी कबूल नहीं किया। मैं कोने में छुपी हुई थी जब हसन इब्न अली आए। बहुत प्यासे उन्होंने कूजे से एक प्याला पानी पिया। मुझसे गलती हो गई कि जहर कूजे में डाला। काश मैं उस पानी को खुद पी लेती और हलाक हो जाती। और इस वक्त मुर्दों के महल में माविया यजीद की मौत के साथ इस कनीज की हम सफर होती। सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत गर्म है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अंधेरा फैल रहा है? बदरूहें आगे बढ़ रही हैं और मुझे बुला रही हैं। मुझे उनका जवाब देना है। अगर देर हो गई तो मैं उनके काफले से रह जाऊंगी। ठहरो, मैं आ रही हूँ। रुको, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। रुको।
1: उसे शहर से बाहर कर दो।

0: सलाम अलैकुम।
1: हमारा सलाम हो तुम पे।
0: तुम लोग कहाँ थे, कहाँ हो तुम लोग? मैं और अहमद तुम्हें 3 दिन से तलाश कर रहे हैं।
2: हुसैन इब्न अली ने कहा था कि हम यहाँ उनका इंतजार करें।
0: हुसैन इब्न अली?
2: हाँ,
0: वो कहाँ?
2: वहाँ, वो देखो उधर उस टीले पे।
0: हमारी जाने फिदा।

के आखिरी आयतों में चार दसूरात हैं। फ़करऊ मा तयस्सर मिन, कुरान मजीद के सिलसिले में इशारा किया गया है कि जितना मुमकिन हो सके, जितना मयस्सर हो सके, इसको पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि कभी पढ़ा कभी छोड़ दिया, मुसलसल हो। फारसी में शेर है, राह रू आनीस के गह तुंद गही खस्ते रवत, राह रू आनस के आहिस्ते वो पे वस्ते रवत। रास्ता चलने वाला वो नहीं जो कभी भागता भागता जाता है और कभी थक के बैठ जाता है। रास्ता चलने वाला सही तौर पर वो है जो आहिस्ता चले लेकिन मुसलसल चले, कंटिन्यू चले, ताकि उसका असर रहे, वो मंजिल मकसूद तक यकीन जानिए पहुंच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं तो दो जूस पढ़ते हैं, तीन जूस पढ़ते हैं, और कभी जब बंद कर लेते हैं महीने महीने गुजर जाते हैं, कुरान खुलता भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं, कोई बीमारी बताएं और जो वो नुस्खा लिख दे, आप या तो पूरा एक ही मर्तबा पी लें तो भी प्रॉब्लम है, या कभी कभी पिए तो भी प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर ने बताया, रोज़ाना अगर दो मर्तबा कहा दो मर्तबा पिए, तीन मर्तबा कहा तीन मर्तबा पिए, तो जितने दिन पीने के लिए कहा, तीन दिन के लिए कहा, पाँच दिन के लिए कोर्स दिया, एक हफ्ते के लिए कोर्स दिया, तो उसी तरह से मुसलसल आप जब दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तब जाकर वो दवाइयाँ आपके लिए असर करेंगी। उसी तरह से ये रूहानी नुस्खे हैं, कुरान का असर, दुआओं का असर, जिस तरह से बताया गया है, अपनी पूरी जिंदगी में मुसलसल अंजाम देंगे तब जाकर इसका असर आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। तो कुरान मजीद को मुसलसल फ़करऊ मा तयस्सर मिन, और उसके बाद वअकीमुस्सलात, नमाज को कायम करना, पढ़ना नहीं है, कायम करना है, पढ़ना और है, कायम करना और है। वह आतु ज़कात, ज़कात अदा करना। देखिए कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर जहाँ जहाँ भी नमाज का तस्करा आया फौरन ज़कात का तस्करा। क्यों? नमाज अल्लाह की इबादत और ज़कात मखलूक की खिदमत, दोनों रुख होनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह की इबादत काफ़ी नहीं है, दीन उसी वक्त तुम्हारा मुकम्मल होगा जब तुम अपने दीन में खुदा के साथ साथ मखलूक खुदा की खिदमत को भी शामिल कर लो। अकीमुस्सलाह, नमाज अल्लाह के लिए, व आतुज़्ज़का, पड़ोसियों से गाफिल ना हो जाओ, रिश्तेदारों से गाफिल ना हो जाओ, अपने माशरे के गरीबों से गाफिल ना हो जाओ, अपने शहर और मुल्क में जो गरीब हैं तुम पेट भर के खा लो और सो जाओ और गरीबों का तुम्हें एहसास ना हो, गरीबों की भूख और प्यास का एहसास ना हो, तो ये सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान की निगाह में मुसलमान नहीं हो सकता। वअकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और उसके बाद चौथा दस्तूर वअक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को कर्जा देना। अल्लाह हमसे कर्जा मांग रहा है। देखिए हमारे माशरे में, हमारे जगहों पर कर्जा कौन मांगता है? जो मोहताज होता है, जो नीडी होता है, वो कर्ज़ा मांगता है। क्या नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह भी मोहताज हो गया है जो हमसे कर्ज़ा मांग रहा है? कौन मांग रहा है, कौन मांग रहा है, ये तो देखिए कौन मांग रहा है? जो अहकमुल हाकिमीन है, जो खालिक कायनात है, जो कायनात का बादशाह है, वो मांग रहा है। अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। हमारे यहाँ कर्ज़ हसना का मफहूम भी बहुत ख़राब है। कर्ज़ हसना यानि लेना और ना देना, नहीं ऐसा नहीं है। कर्ज़ हसना का शायद मैंने कभी अर्ज़ किया, कर्ज़ हसना का बहुत ज़्यादा सवाब है, सदक़े से ज़्यादा सवाब कर्ज़ हसना देने में है। सदक़े में अगर एक का दस है तो यकीन जानिए कर्ज़ुल हसना में एक का बीस है। क्यों? इसलिए कि कर्ज़ा देने के बाद हो सकता है, जहाँ तक वह सदका देने के बाद हो सकता है सदका मुस्तहक तक पहुँचा हो या ना पहुँचा हो। इसलिए कि आजकल सदका लेने वाले मुस्तहक गैर मुस्तहक सब मिले हुए हैं, कब पता चलेगा कौन मुस्तहक है और कौन मुस्तहक नहीं है। लेकिन आप देते रहें, घबराएं नहीं, इसलिए कि आपकी ज़िम्मेदारी देना है और लेने वाला जानता है और ऊपर वाला जानता है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो कर्ज़े का सवाब सदक़े से ज़्यादा है, ये याद रखें। कौन कर्ज़ा मांग रहा है? मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? अल्लाह कर्ज़ हसना मांग रहा है।
ये जान लो कि वो कर

जो बहुत ही अहम दुआ है हयात तय्यबा के लिए, तय्यब व ताहिर ज़िंदगी के लिए, जहाँ पर एक ज़ियारत करने वाला ज़ायर दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा जल महया या महया मुहम्मद व आले मुहम्मद, ए मेरे अल्लाह मेरी ज़िंदगी को मुहम्मद व आले मुहम्मद की ज़िंदगी की तरह करार दे दे, और व ममाती मेरी मौत को मुहम्मद व आले मुहम्मद की मौत की तरह करार दे। यानी इनकी ज़िंदगी भी तय्यब व ताहिर और इनकी मौत भी तय्यब व ताहिर, पूरी ज़िंदगी कामयाब, वैसे ज़िंदगी जैसे अल्लाह चाहता था। ये ज़ियारत आशुरा बहुत अहम ज़ियारत है, जिसको आयतुल्लाहिल उज़्मा बहजत उनके दर्जात की बुलंदी के लिए एक ज़ोरदार सलवात पढ़ी मुहम्मद वाले मुहम्मद पर। सत्तर साल मुसलसल अपनी ज़िंदगी में, 80 साल के आसपास उनकी उम्र रही, अपनी ज़िंदगी में 70 साल से ज़्यादा उन्होंने हर इमाम की ज़री पर जब भी जाते थे या किसी इमामजादे की ज़री पर जाते थे तो वो ज़ियारत आशूरा नमाज सुबह के बाद, ज़ियारत जामे कबीरा और नमाज जाफर तैयार, पूरी ज़िंदगी में इन्होंने ऐसे शामिल कर लिया कि एक दिन के लिए भी तर्क नहीं हुआ। जब ये अमल मुसलसल होता है तो उनकी ज़िंदगी तय्यब व ताहिर हो जाती है, ज़बान मुअस्सिर हो जाती है, दिल पाक हो जाता है। अब इनकी निगाहों से जो हिजाबात हैं, जो पर्दे हैं, वो पर्दे भी हटते चले जाते हैं। और एक चीज़ हयात तय्यबा के लिए जो पूरी जान है वो मुहम्मद व आले मुहम्मद की मोहब्बत और विलायत। शर्त ईमान है, जुज़ ईमान नहीं है, शर्त ईमान है, फ़र्क है पार्ट होना, जुज़ होना और शर्त होना, ये ईमान के लिए शर्त है। देखिए जुज़ हो तो उसमें ये है कि अगर जुज़ छूट जाता है तो कुल बाकी रह जाता है। जैसे ये हाथ जो है जिस्म का, बॉडी का पार्ट है, जुज़ है, अगर हाथ ना हो तो जिस्म रहता है, लेकिन जो शर्त है अगर शर्त ना हो वो मशरूत भी नहीं रहता। जैसे रूह सोल इंसान की बॉडी के लिए, ये रूह जो है जुज़े नहीं, जुज़ नहीं है जिस्म के लिए बल्कि शर्त है। यानी अगर रूह एक लम्हे के लिए भी ना रहे तो जिस्म जिंदा ही नहीं रह सकता। तो मोहब्बत व विलायत जुज़े ईमान नहीं, शर्त ईमान है, जिसके बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। तो ये मोहब्बत व विलायत भी हयात तय्यबा के लिए ज़रूरी है। आप आए तथीर में पढ़ते हैं ना, कभी गौर नहीं करते, बहुत मशहूर व मारूफ हमारे बच्चे बच्चे भी जानते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम, इस लफ्ज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इस लफ्ज़ इन्नमा पर गौर करें। खुदावंदे आलम मखसूस कर रहा है, ए अहले बैत, अहले बैत से मुराद यहाँ पर 14 मासूमीन हैं, 14 मासूम हस्तियाँ जो इस्मत कुबरा की मंजिल पर हैं। तो खुदा इनकी तहारत का ऐलान कर रहा है कि ए अहले बैत, ए 14 मासूमीन, मैंने आपको ताहिर बनाया है। इन्हें 14 मासूमीन की तहारत का ऐलान है। ये 14 मासूमीन इस्मत कुबरा की आखिरी मंजिल पर हैं, बाकी अनबिया भी मासूम हैं, बहुत सारे इमामजादे भी मासूम हैं। जनाब अब्बास के लिए बताया जाता है कि ये इस्मत के दर्जे पर हैं, जनाब अली अकबर जो है इस्मत के दर्जे पर हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा इस्मत के दर्जे पर हैं, लेकिन 14 मासूमीन का दर्जा बहुत ऊंचा दर्जा है। तो खुदा कह रहा है कि मैंने इनको पाक किया और उनकी पाकिजगी का ऐलान कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है। तो जबकि दूसरे भी मासूम हैं तो ये कैसे मासूम हैं? तो खुदा ये बताना चाहता है कि दूसरे मासूम हैं इनकी वजह से। यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद को, 14 मासूमीन को मैंने पाक किया है, मैं उनकी तहारत का ऐलान कर रहा हूँ, और बाकी जितने पाक होंगे, जितने तय्यब व ताहिर होंगे, वो 14 मासूमीन से मुतमस्सिक होकर ही हो सकते हैं। इनके बगैर कोई भी हयात तय्यबा को हासिल नहीं कर पाता जब तक कि इनसे मुतमस्सिक ना हो जाए।

0: तवावी मर गए हैं या भाग गए हैं, अब तमाम कुफी आले जुबैर की बैत में हैं।
1: तवाबीन का निशाना कातिल आले हुसैन है, उन्हें आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं।
2: एक साथ दो ऊँटों पर नहीं बैठा जा सकता। अगर तुम लोग मुसलमान हो तो तुम्हें आले जुबैर की बैत करनी होगी।
0: शेर के पिंजरे में हाथ मत डालो बेवकूफो।
2: अगर ना माने तो क्या होगा?
3: हमारी बीवियाँ बेवा हो जाएंगी और बच्चे यतीम।

0: कैसी कैसी गलती कर ली मैंने?
1: आपने क्या फरमाया अमीर?
0: तुम तो खामोश ही रहो बेचारे साथ। ये सारी आफतें नागहानी तुम और तुम्हारे साथियों की मरहूम मिन्नत है।
2: माफ कीजिएगा अमीर, हम क्यों? हम तो सरापा तस्सीम और इताअत गुजार रहे हैं, लोगों की नजरों में जाहिर ना हुए, सारी दोस्तियां खत्म कर दी और बेवा औरतों की तरह खाना नशीनी इख्तियार कर ली हमने।
0: इतने जिल जोशन, तुमने क्या समझा है किसी बच्चे के मद्दे मुकाबिल हो? इन गमजदा लोगों को किसने गमजदा किया है? मैंने या तुम लोगों ने? अगर मैंने तुम लोगों की बैत कबूल न की होती तो आज तवाबीन की लानत मलामतें मेरा गिरेबान न पकड़ती। तवाबीन का हमसे और आले ज़ुबैर से कोई लेना देना नहीं था अगर हम कातलाने हुसैन को पनाह न देते?
3: ये ग्रोह तो मुट्ठी भर बेनाम और निशान लोग हैं, अमीर ख्वामखा उनसे डर रहे हैं। कूफे के लिए असल खतरा एक जहरीला सांप है जो गिरगिट की तरह छुप छुपा के कूफे में दाखिल हो गया है और किसी को उसके मामलात और मेल मिलाप की फिक्र नहीं है। मुख्तार की बात कर रहा हूँ।
0: झगड़े के दौरान मौजू बदल रहे हो उमर।
4: शाबाश, मरहबा पिसरे साथ, मरहबा। तुमने सियासत किससे सीखी है उमर? मुझे यकीन है इब्ने ज़ियाद के पास नहीं सीखी होगी। इब्ने ज़ियाद के पास अगर दुरियात और समझदारी होती तो मुख्तार को सांस लेने की भी मोहलत ना देता। मैं बिन यजीद हूं, आप लोगों का नया हाकिम, और ये इब्राहिम है नवासाए मरहूम तरातुल खैर। अब हम एक दूसरे की मदद से कूफे को चलाएंगे।
0: खुश आमदेद शेख, ये कैसा हुलिया है?
4: कोख नशीन लोगों के हुली में आए हैं ताकि तवाबीन जैसे लगे और उनके गुस्से से बच जाए। बहुत बुरी तरह उनकी गर्दन की रगे पोली हुई थी।
1: इराक अरब के हजले उरूस में खुशामदीद अमीर।
4: उरूस से मुराद कूफा है?
1: जी अमीर, खुदा की कसम ये दुल्हन आप जैसे काशनाज शोहर को ही जेब देती है। मैंने सुना है कि आप ज़ुबैरियों के आला पाए के सियासतदानों में से हैं।
4: सही। अगर मैं पाए का सियासतदान होता तो किसी बेवा दुल्हन के हजले पर हरगिज कदम नहीं रखता जिसके शोहर होने का दावा हजारों खबीस लोग रखते हैं। जनाब आमिर, यकीनन आप अपनी गलती की तरफ अब तक मुतवज्जा हो चुके होंगे। आपने कूफे में गैर संजीदा फैसले से वो आबरू आले ज़ुबैर गंवाई है जो 3 साल और कुछ अरसे में खूने दिल से हासिल की थी। और अगर मुझे यकीन ना होता कि तुम्हारी ये खता तुमने जान बूझ कर नहीं की थी तो मैं अभी हुक्म देता कि तुम्हारी आबरू रेजी कर दी जाए। तुम पिसरे साथ और तुम ज़िल जोशन के बेटे और तुम लोग जिनके हाथ फर्जंदे रसूल के खून में भरे हुए हैं, आले ज़ुबैर वो पहला गिरोह था जिसने खून हुसैन के दिफा में बात नहीं की, अमल किया। याद रखो कि आले ज़ुबैर अपने अहद पर साबित कदम है और पुख्ता इरादा रखते हैं कि कातिलाने हुसैन के साथ जंग करें। तवाबीन भी यही चाहते हैं। हाँ, तो फिर जाइए और अपने आप को हमारे और तवाबीन के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा कीजिए। अगर जीत गए ये ताख और ये बदचलन औरत का हजले उरूसी आपका होगा।

0: आका आका मेरे आका, उठिए।
1: क्यों तंग कर रहे हो आका के बच्चे? सोने दो मुझे।
0: उठिए मेरे आका।
1: आए हो तुम पर के मेरे पर तोड़ दिए तुमने, आसमान से जमीन पर गिरा दिया। पागल कहीं के, क्या मैंने नहीं कहा था कि हर गधे के खटखटाने पर कह देना कि मेरा आका घर में नहीं है?
0: मेरे आका मुख्तार आया है।
1: क्या
0: मुख्तार आया है?
1: कौन
0: मुख्तार आया है?
1: मुख्तार, मुख्तार, हाँ, ये सब जल्दी से यहाँ से ले जाओ, यहाँ से जल्दी करो, उठा लो यहाँ से, ले जाओ फौरन, छुपा दो उनको यहाँ पर। हाय हाय हाय, कोई प्याज, कोई लहसुन, कोई सिरका, कोई हलवा, कोई कचरा।

0: क्या रूप है, क्या कदो कामत है। ये हमारा अपना अबू इसहाक है, मैं ठीक देख रहा हूँ? मार डाला तुमने इस तवील दूरी के गम में।
1: उफ, उफ, उफ, कैसी गलीज बदबू है। उबैदा, तुमने अब तक ये बुरी आदत खत्म नहीं की।
0: नहीं तुम्हारी कसम, मतलब क्यों नहीं, मगर मेरी एक रकत नमाज भी कजा नहीं हुई है।
1: नमाज का शराब पीने से क्या वास्ता है?
0: वास्ता नहीं है, बेशक नमाज फहाशी और बुराइयों से रोकती है, तो फिर यकीनन वो बुराई जिसकी बदबू आपको अज़ियत दे रही है, इन्हीं दिनों नमाज कायम होने के साथ साथ दफा हो जाएगी।
1: हैफ है तुम पर कि तुम उम्मुल खबाइस को पीते हो।
0: मैं इंसान हूं मुख्तार, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब ज़र्फ़ भर जाता है तो लबरेज हो ही जाता है। हम दोनों की दोस्ती में इन हुक्मरानों की वजह से दूरी आ गई है, तन्हा रह गया था मैं इस झूठ मुनाफकत जुल्म और धोखे के शहर में। तुम जो गए हो, उबैदा भी बेकस और यतीम हो गया। ताली एक हाथ से नहीं बजती मुख्तार। गमे हुसैन ने वो आग मेरे वजूद में फैला दी कि मैं जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। मजबूर होकर यहूदी अय्यूब की शराब की दुकान पर गया। फिर सिर्फ शराब ही मुझे तस्कीन पहुंचाती थी। अब तुम आ गए हो तो मुझे इस शराब की जरूरत नहीं, कसम से आज के बाद मुंह भी नहीं लगाऊंगा।

0: इंशाल्लाह। कब क्याम कर रहे हो? हाँ,
1: मैं तो एक लाजवाब से सवाल में उलझ गया हूं उबैदा। ये कैसे हो सकता है कि इश्क़े हुसैन को उस दिल में जगह दी जाए जो शराब से आलूदा हो?
0: मैं खुश हो गया था कि मुख्तार ने मेरे इश्क पर बावर किया है।
1: बावर न किया होता तो मेरा सवाल लाजवाब न रहता। आज रात तुम्हारा मुंतजर हूं उबैदा। अब हमारे क्याम के बारे में गुफ्तगू करें।
0: सर आंखों पर मुख्तार।
2: ए मुख्तार, है तू दुश्मने अशरार, तू ही उम्मीद अंसार, तू ही कातिले कुफार, तू ही कीनाए बेदार, तू ही बंदा ए होशियार।
1: शुक्रिया शुक्रिया
2: मुख्तार। जरा जोर से चिंगा, सरे खलखे खता खा, बस एक बार के डूबी है शबे तार, हुआ मौसम पेकार, वकीना रब बना अजाबन्नार।
1: मरहबा

0: तुम हो भुई साहब?
1: वादा पूरा हुआ इसमें, मैंने वादा किया था ना क्या हूँ?
0: क्या मैं वाकई जाग रहा हूँ? कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा?
1: मेरी मौत की खबर के मुंतजिर तो नहीं थे?
0: अगर झूठ सुना चाहो तो नहीं, खुदा तेरा शुक्र है मुख्तार, मुख्तार मेरे भाई।
1: इस्माइल, लोगों से कहो शोर न करें, मसलहत नहीं है।
0: ये कूफा है अबू इसहाक, कूफे में आले जुबैर गूंगे और बहरे हैं।
1: जुबैरियों की आंख और कान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, एक माकूल वजह है।
0: ए बनी हिंद के लोगों, दुरूद हो आप लोगों पर कि गौहर शनास हैं और मुझे अबू इसहाक की नजरों में सर बुलंद कर दिया है। यकीनन अबू इसहाक मक्के से हमारे लिए कोई कीमती सौगात लेकर आया है। फिलहाल रास्ते का थका हुआ है, अब इसे थकन दूर करने का मौका दीजिए और फिलहाल शोर मत कीजिए। जब मैंने सुना कि जुबैर के बेटे की शराइत के साथ बेइज्जत की है तो तुम्हारा फातिहा पढ़ दिया था और यकीन कर लिया था कि अब मुख्तार के साथ जाने भी होंगी तो भी अपनी जान इन मनहूस जुबैरियों के जाल से किसी तरह नहीं बचा सकेगा।
1: तुमने गलत नहीं सोचा था इस्माइल, अगर खुदा का लुत्फ करम न होता तो मैं आले जुबैर की कीने की आग में जल जाता। ये गिरोह यजीद और उसके साथियों की रविश पर ही चलेगा।
0: जब तुम्हारी बेइज्जत की खबर सुनी तो मेरे तो सींग निकलने वाले थे। तुम्हारा उस मनहूस औलाद से क्या वास्ता? वो हमारे मौला अली के फरमान के मुताबिक जुबैर की वही मनहूस औलाद है जिसने अपने बाप पर भी रहम नहीं किया और जंगे हमल में उसने अपने बाप के गर्दन पर तलवार रखी और उसे उकसाया कि वो अली से जंग करे।
1: इस्माइल, मैंने इस बेत के साथ अपने आप को शियों के इस गिरोह में बदनाम कर लिया है ताकि इस मनहूस औलाद की नहुसत को उन लोगों पर साबित कर सकूं जो उसके दीवाने बने हुए हैं। ये मत भूलना कि अब भी कूफे में बहुत से लोग उस मनहूस औलाद के तरफदार हैं। आज रात अपने भाई के साथ मुझसे मिलने के लिए आओ, कुछ नई बातें हैं तुम लोगों के लिए, सुनोगे तो महसूस होगे।
0: पसंद शौक अमीर, अगर मुझे मुख्तार के सियासतबाज होने का इल्म ना होता तो तुम यकीनन मेरे सर पे दो सींग देखते।
2: आले जुबैर के नमक हलाली करने वाले तो नहीं हुए ना मुख्तार?
1: अब्दुर्रहमान, आले जुबैर जो खाना अली के मुहिबों को देते हैं उसमें नमक के बजाय जहर हलाहल डालते हैं। जो शिया जुबैरियों के सुफरे पर बैठता है वो नमक हलाली करने वाला नहीं बनता, मर जाता है।
2: तो कितनी अजीब बात है कि मुख्तार जिंदा है।

0: मैं जिंदा रह गया क्योंकि जहर की काट अपने पास रखता था।
1: मैंने सुना था कि हुकूमत इराक की शर्त पे तुमने बैत की है।
0: ठीक सुना तुमने।
1: तो तुम हुकूमत के लिए कूफे आए हो?
0: नहीं, मैं कयाम के लिए कूफा आया हूं।
1: यानी तुम जुबैरियों के मुकर्रर करदा अमीर नहीं?
0: मैं अली वालों का अमीर हूं अब्दुर्रहमान।
1: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं।
0: तुम्हें हक है। सियासत उन लोगों के लिए सर चकरा देने वाली है जो सियासत नहीं जानते। इन चक्करों से जान छुड़ाना चाहो तो आज रात मेरे पास आ जाओ। इब्ने हनफिया की जानिब से एक ऐसा हुक्म है मेरे पास कि तुम भी सुन लो तो बुरा ना होगा। जनाब अब्दुल रहमान इब्ने शुरह,
2: शियों के शेर के दीदार से हमारी आंखें रोशन हों।
3: तुम्हारी मक्का की दिलावरी और कारनामों का शोहरा तुम्हारे मुरीदों की जबान का विट बन गया था मुख्तार। मैंने सुना है कि यजीदी लश्कर तुम्हारे बाजुओं को एजाज देकर अंगुश्ते बदनदां हो गए थे।
0: साहिब, मौजजा मेरा नहीं था जिसने शामी देव को जमीन बोझ कर दिया। इश्क अली ने मेरे बाजुओं को ताकत बख्शी थी।
3: अली अली अली, खुदा की कसम अगर दरिया मिल जाए तो मैं भी तैराकी जानता हूं। मेरा सीना इश्क अली से माला माल है।
0: दरिया था एक करबला जैसा साहिब, क्यों नहीं गए?
3: मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं। मुझे मलामत मत करना कि किसी कुत्ते की तरह पिटता रहा हूं। शैतान मुझमें समा गया था और मुझे करबला के भंवर से डरा रहा था। अगर कयाम का इरादा है तो मेरा हाथ हाजिर है।
0: हमारी वादा गाज रात मेरा घर है साहिब। ऐसा हुक्म है इब्ने हनफिया का जिसे तमाम बुजुर्गान शिया को सुनना होगा।

0: हाँ मगर ज्यादातर आसमान में होता है।
1: बेटा साबित, इस बहस को उस वक्त तक के लिए छोड़ो कि जब मुख्तार थका हुआ ना हो।
0: जो हुक्म दादी जान।
2: मैं लौट आया नारिया, मगर वही हमेशा के मसाइल के साथ।
3: खुश आमदेद मुख्तार, ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास था। दुमा जब आई तो उनके साथ तुम्हारी रूबी आ गई। पता चल गया कि तुम आने वाले हो।
2: आज रात से तुम्हारा घर मैदान जंग है।
3: ताजुब नहीं होगा मुझे, दुमा मुझे सब कुछ बता चुकी हैं।
2: नायला, बाबा की जान, कितनी बड़ी हो गई हो।
4: आपके हाथ चूम लूं बाबा। अम्मा जान आप शर्त हार गईं, बाबा मुझे पहचान गए।
2: खुदा जानता है कि मैं जंग और खूनरेजी पर हरगिज मायल नहीं हूं, मगर मेरा दिल चाहता है कि खुदावंद आलम मेरे भाई और उनके अहले बैत के कातिलों को जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करे और हमारे खून नाहक का इम्तिहान ले। मुख्तार मेरा अमीन, वजीर और अमीर है। उसे इराक पर मामूर करता हूं ताकि हमारा दिफा करे। जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया। वालेका बतक वल्लाही मस्ततअता।

0: हे नौसाफ के साथ हम पर हुज्जत तमाम है। अगर मौला सज्जाद ने अपने चचा मोहम्मद हनफिया को कयाम के मामलात में अपना मुकम्मल इख्तियार वाला वकील बना दिया हो, और अगर इब्ने हनफिया ने इस हुक्म के मुताबिक मुख्तार को अपना अमीन और वजीर बना दिया है, तो फिर ज़ोमाए शिया को बगैर चूं चरा के मुख्तार की बैत कर लेनी चाहिए।
1: ये तुम अगर अगर क्यों कर रहे हो अब्दुल रहमान?
0: अगर मैंने अगर अगर कर लिया तो क्या गुनाह किया?
1: तुम तो यूं अगर अगर कर रहे हो कि जैसे मुख्तार ने ये हुक्म खुद अपने लिए बना दिया हो।
2: इस हुक्म में कोई शुबा है अब्दुल रहमान?
0: इसमें शुबा नहीं अबू इसहाक, सिराहत नहीं है। हम उस कयाम पर मामूर किए गए हैं कि जिसमें शियों के इमाम आसिल मौला सज्जाद ने खुल्लम खुल्ला हुक्म कयाम नहीं दिया है, एक जरिया मुअय्यन किया है, और उनके उस जरिए ने एक तीसरा वसीला मुअय्यन कर दिया है। उबैदा ने कुछ जल्दी कर ली। मेरा मकसद ये नहीं था कि खुदा नखास्ता मुख्तार झूठा है और ये हुक्म जाली है। मेरे इस अगर अगर की वजह कयाम के हुक्म का गैर वाज़ह और मशकूक होना है। इस हुक्म में यह लिखा गया है कि मैं जंग और खून रेजी पर मायल नहीं हूं, मगर मैं चाहता हूं कि खुदावंद आलम मेरे भाई के कातिलों का क़िसास करे। या ये लिखा है जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया है। इस हुक्म के मुताबिक इब्ने हनफिया ने मुख्तार की ताईद की है, ना कि कयाम मुख्तार की। यानी अगर मुख्तार कयाम करना चाहे तो उसने अपने फतवे के मुताबिक कयाम किया है।
2: अब्दुल रहमान ठीक कह रहा है, यह हुक्म ना कयाम को वाजे कर रहा है और ना इमाम सज्जाद से मंसूब है। मौजू थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। याद होगा कि कूफियों की जानिब से हमारे इमाम शहीद को भेजे गए बुलावे के वाक़े में यही शुबहात पैदा किए गए थे। जनाब सुलेमान सुर्द खुजाई उन दिनों तलवार के कयाम को जायज़ नहीं समझते थे। उनका अकीदा ये था कि जहाद का हुक्म खुद इमाम का वजीफा है। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि उन्होंने हजरत मुस्लिम इब्न अकील के कयाम को मकरूह ठहराया और पीछे हट गए, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और मौला हुसैन उस वक्त तलवार से कयाम न करने का क्या उज़्र रखते थे, ये कोई छुपा हुआ मौजू तो नहीं, आप सब जानते हैं। आज मौला सज्जाद की हिकायत उनके शहीद बाबा के हालात और मसलहत से ज्यादा सख्त है। आज एक नई मुसीबत भी हमारे सरों पर मंडलाने लगी है। मुसीबत दो खानदानों की है। आले उमैया कम थी कि आले

0: जुबैर का भी इजाफा हो गया। अगर आज मौला इमाम सज्जाद अलैह सलाम अपने चचा को वसीला बनाते हैं या अगर उनके चचा खुल्लम खुल्ला हुक्म नहीं देते हैं तो ये सिर्फ यजीदी और जुबैर फितनागरों के मुंह बंद करने के लिए है, जो बेशक खूब जानते हैं कि आवाम को कैसे फरेब दें। बखुदा कसम, बहुत अफसोसनाक बात है कि शिया इतने सारे तर्क तजर्बों और इतना सारा खून बह जाने के बाद भी इस जैसे शुबहात का दामनगीर हो जाए।
1: मुझे जवाब मिल गया अबू इसहाक, तो तुम मानते हो कि शियों का इंतकाम खून हुसैन के लिए कयाम करना उलमाए शिया का वजीफा है?
0: जी हाँ, मानता हूं।
1: तो तुम सुलेमान का क्या करोगे? इब्ने ज़ियाद एक अजीम लश्कर के साथ इराक की जानिब निकल चुका है। सुलेमान और तवाबीन उनसे लड़ने जाना चाहते हैं। उनकी नीयत भी इंतकाम खून हुसैन है।
2: सुलेमान एक साफ सुथरी नीयत रखता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सुलेमान के पास सियासत है ही नहीं। वो सबको मरने के लिए ले जा रहा है। जंग की से पैसा लारी उसे करनी चाहिए जिसे काम का हुनर आता हो। तो अबू इसहाक से बेहतर कौन हो सकता है?
3: सुलेमान मुख्तार को दिए गए हुक्म से बेखबर है। अगर उससे बात करके उसे ये हुक्म दिखा दिया जाए तो वो काने हो जाएगा और मुख्तार की बैत कर लेगा।
4: ये नामुमकिन है कि सुलेमान मुख्तार की बैत के लिए राजी हो जाए।
1: क्यों राजी नहीं होगा उबैदा?
4: वो अपने आप को मुख्तार से ज्यादा आलम समझता है। मेरे मुताबिक बात शरई अहकाम में आलम पर फाल आलम भी होता है। इस हुक्म में तुम्हारे मुताबिक क़याम एक ऐसा शरई वजीफा है जो उल्मा के मिले जुले फैसले के बाद होना चाहिए। और सुलेमान,
3: उससे कोई बात ही नहीं है। उबैदा, अबू साहब, तुम खुद सुलेमान से बात क्यों नहीं कर लेते?
0: उबैदा ठीक कह रहा है साहब, मेरे और सुलेमान के दरमियान कोई मुआफ़क़त हो ही नहीं सकती।
3: क्यों?
0: क़याम के मामले में मेरी राय सुलेमान की राय से फर्क रखती है। पहली ये कि मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि जीत जाएं, मगर सुलेमान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, उसका मकसद सिर्फ शहादत है। सुलेमान की नज़र में जीत का मतलब शहादत है। दूसरी बात यह कि मैं क़याम को कूफे पर तसल्लुत हासिल करने से शुरू करूँ। हमें जीतने के लिए कूफे की हुकूमत ज़रूर हासिल करनी होगी, मगर सुलेमान को न तो कूफे की परवाह है और न ही उसकी हुकूमत से लेना देना है।
1: तो फिर क्या करें, या सुलेमान या अबू इसहाक? इसके अलावा कुछ और हुआ तो शिया दो ग्रुपों में बढ़ जाएंगे और निफाक हो जाएगा।
0: खुदा जानता है कि मैं शियों के तकसीम होने पर राजी नहीं हूं, मगर मैं उस जंग में साथ भी नहीं दे सकता कि जिसका अंजाम शियों का कत्लेआम और शिकस्त हो। इब्ने मरजाना एक बड़े लश्कर के साथ इराक का रुख कर चुका है। आप जानते हैं कि उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। सुलेमान एक दफा उसके मुकाबले में मगलूब हो चुका है। अब वाहिद रास्ता जो मेरी नजर में था वो ये था कि आप बुजुर्गान कौम से बात करो। अगर आप लोगों को मेरी बात हक लगती है तो सुलेमान उसके साथियों से बात करके देख लीजिए। शियों के बुजुर्गों में से कुछ अफराद सुलेमान के साथी हैं। अगर कौम के बुजुर्ग और उलमा मुख्तार की हकानियत पर इत्तफाक राय दिखा दें तो सुलेमान भी मान जाएगा। अगर मैं बात करूं तो मुमकिन है कि वो ये समझे कि मैं हुकूमत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूं। अगरचे मैं ये भी सुन चुका हूं कि मैं हुकूमत और रियासत के हुसूल के लिए यह सब कुछ कर रहा हूं। अगर मुझे हुकूमत की जरूरत होती तो मैं आले जुबैर की बैत में ही रहता और पिसारे जुबैर की दी हुई हुकूमत को ना ठुकराता। उसने मुझे कूफे की हुकूमत दे दी थी, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि आले जुबैर को बरहक नहीं जानता था। सुलेमान को अगर पता होता कि बिन यजीद किस लिए कूफा आ रहा है तो एक लम्हे की ताखिर के बगैर मेरी बैत कर लेता। आज रात कौन सी तारीख है? मुख्तार की बातों को जहन नशीन कर लीजिए। बिन यजीद कूफे की जानिब से इसलिए मामूर किया गया है ताकि शियों को शियों के हाथों खत्म कर दे, यानी बिल्कुल वही काम जो मलून इब्ने मरजाना ने किया। मौला हुसैन को बुलाने वालों को ही मौला हुसैन के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। बिन यजीद जैसे ही कूफा पर मुसल्लत होगा सबसे पहला काम यही करेगा कि तवाबीन की हिमायत करेगा और उन्हें इब्ने मरजाना से लड़ने के लिए भेज देगा।
2: मैं तो अबू इसहाक की हकानियत को मान गया। अब मुझे समझ आया कि अबू इसहाक के पिसरे जुबैर से बेहद किस हिकमत के तहत थी।
1: अबू इसहाक की हकानियत का कोई भी मुनकर नहीं है इस्माइल। मुझे तो लगता है कि जनाब सुलेमान भी बिलाखिर मुख्तार को अपना सरबरा मान लेंगे।
2: हाथ बढ़ाओ मुख्तार, हमें बेहद करनी है।

0: अगर आमिर को इब्ने जुबैर ने चुना होता और आमिर कोई खता कर गुजरता तो उसका गुनाह खलीफा के सर होता कि उसने सही इंतखाब नहीं किया है। मगर आमिर तो आप लोगों का चुना हुआ शख्स था, खलीफा ने आपकी राय को मोहतरम ठहराया और आपके इंतखाब पर भरोसा किया और उसकी चंद साला इज्जत व आबरू बर्बाद हो गई। खलीफा को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुजरिमों को अमान दे। अब ये तो कोई बात नहीं ना कि खलीफतुल मुस्लिमीन जो चाहे कर गुजरे, मुजरिमों से इंतकाम लेना खुदा का हुक्म है। आले जुबैर इस बात पर फख्र करते हैं कि उन्होंने इंतकाम खूने हुसैन का परचम सबसे पहले लहराया। अगर आज कूफे में आवाज या लसारातिल हुसैन बुलंद है तो ज़ैफ तिखार दुरूद खुदा हो उन मोमिनीन पर जिन्होंने अपने आप को तवाब कहलाया है और खुदा के दीन की नुसरत के लिए खड़े हुए हैं। तवाबेन का जो इरादा है वही जुबैरी खलीफे का इरादा है। आले जुबैर भी यही नारा लगाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। या लसारातिल हुसैन,
1: देख रहे हो अब्दुल रहमान, आखिर वही हुआ ना जिसकी मुख्तार ने पेशगोई की थी।
2: जाहिर है मुख्तार सालों इस ग्रुप के साथ रहा है इस्माइल, उसे इनके हर हरबे का अंदाजा होना भी चाहिए। हाँ,
1: तुम अब तक मुख्तार के बारे में तरद्दुद रखते हो अब्दुल रहमान?
2: मुझे डर है कि इस ग्रुप की सियासतबाजियां मुख्तार में भी सराहियत कर गई है इस्माइल।
1: अपने दिल को साफ करो आदमी।
2: एक खतरनाक शक मेरी जान को लाक हो गया इस्माइल। मैं मक्का जाकर इब्ने हनाफिया से अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं।

हमारे तबाब पीरों मुर्शिद पर। शाबाश है इस हुस्न इंतखाब पर, बेशक तवाबैन का उन्वान बहुत बामाने है। ज़ई नसीब आप लोगों के अपने नफ्स अम्मारा को जलील कर चुके हैं। आप जैसे

0: से मोमिनीन उम्मत के फख्र का बाइस हैं। खुदा आप लोगों के दराजात मजीद बुलंद फरमाए।
1: खुश आमदी, अहलन व सहलन,
2: अहलन व सहलन,
1: खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद।
0: आपकी खिदमत में अर्ज है कि मैं कूफे के पिछले वाली की नादानी की बिना पर तवाबैन से माजरत खाई पर मामूर हुआ हूँ, और मुआफी के अलावा मुझे ये हुक्म है कि तवाबैन की तहरीक से हर तरह से हिमायत करूं। आपको तो पता होगा कि इब्न ज़ियाद एक बड़े लश्कर के साथ इराक की तरफ निकल चुका है। सुना है कि आप उससे कस्द जहाद रखते हैं। हमारी मदद और हमारे बैतुल माल के पैसे को कबूल फरमाइए।
2: ये जो आपने कूफे के पिछले हाकिम की गिरी हुई और तौहीन आमेज हरकत की माफी मांगी, तो मुझे आपका उज्र कबूल नहीं करना चाहिए, खुदा को कबूल करना चाहिए। हुसैन खून खुदा है, एहानत खून हुसैन एहानत खुदा है। और तवाबीन के जहाद का जहां तक मसला है, जी हां करेंगे इंशाअल्लाह। तौफीक मिली तो तवाबीन अपने शहीद इमाम के कदमों में बोसा देकर एक नई करबला आबाद करना चाहते हैं। और आप लोगों की मदद की जहां तक बात है, इस पर गौर किया जा सकता है। आपकी तमाम तर बातें, खास तौर पर आपने कूफे के दारुल हुकूमत में दाखिल होते ही जो बर्ताव उमर साद लईन और शिमर खबीस के साथ किया, और उसके अलावा जो खुतबा आपने मस्जिद कूफा के मेंबर पर दिया और जो बयानात दिए हैं, वो हम तक पहुंचे हैं। आपने बातों में तो अपनी भाईचारगी जाहिर कर दी, अब ये देखना है कि आप अमल में क्या करते हैं।
0: उम्मीद है कि हम अमल में भी अच्छे ही रहेंगे।
2: खुदा पर तवक्कुल किया।
0: वैसे मुख्तार कहाँ है? वो आप लोगों में नजर नहीं आ रहा।
2: मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुख्तार आपका दोस्त है।
0: हाँ, वो मुख्तार हमारा भी दोस्त है। जब हम मक्के में थे तो जैसे ही उसे पता चला कि आपका कयाम का इरादा है, फौरन वहां से निकला कूफे की तरफ ताकि आपकी रकाब में शामिल हो सके।
2: अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली हैं उसकी मुझे, मगर अब तक उसे देखा नहीं।
0: अबू इसहाक कूफे से चंद साल दूर था, रिश्तेदारों में मसरूफ होगा। जरा मिलने मिलाने से फारिग हो जाए तो आपको देखने जरूर आएगा।
2: अगर आ गया तो उसके कदम सर आंखों पर, और नहीं आया तो खुदा उसकी हिफाजत करे। मुझे नहीं लगता कि मुख्तार तवाबीन से आ मिले।
0: क्यों शेख, मुख्तार एक बेमिसाल लड़ाकू है।
2: मुख्तार के बेमिसल बहादुर होने में कोई शक नहीं, ये तो सबको पता है। मगर ये कि मुख्तार क्या चाहता है, ये मालूम नहीं, खुदा के अलावा किसी को नहीं मालूम। अगर मुख्तार की नियत आखिरत है तो खुदा कबूल करे, और अगर उसकी नियत दुनिया है तो खुदा उसकी हिदायत करे।
3: अर्ज किया था ना, ये भेड़िया शियों के सर पर वही आफत ढाने वाला है जो इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम के जमाने में किया। बखुदा कसम, इस वक्त बिन यजीद को कूफे से भगाना इब्न मरजाना से लड़ने पर मुकद्दम है। کاش سلیمان اس خطرے کو سمجھ جاتا.
4: یہ سلیمان ہمیشہ تھوڑا زمانے سے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, ہمیشہ دیر سے سمجھتا ہے. اس وقت سمجھتا ہے جب کوئی کام نہیں کیا جا سکتا سوائے توبہ اور رونے دھونے کے. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟
5: ہم سب میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے, سلیمان کوئی معصوم تو نہیں ہے.
4: کتنی خرابیاں صاحب, کتنی غلطیاں. خدا کی قسم اب بہت ہو چکا. ہم نے دیر سے سمجھنے کی عادتوں سے کم داغ نہیں دیکھے ہیں. ابو اسحاق, تمہیں تمہاری داڑھی کی قسم, قیام شروع کر دو اور مسئلے کی جڑ کو ختم کر دو.
3: حوصلہ رکھو عبیدہ, ہم تفرقہ بازی نہیں پھیلانا چاہتے.
4: مت گھبراؤ مختار, ہم تفرقہ بازیاں نہیں کریں گے.
6: عبیدہ بھی میری طرح اپنی تلوار کی چھکا جک سننے کو بے چین ہے.
7: نخیلہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ تب وابین نے وہاں پراؤ ڈال دیا ہے.
3: اسماعیل پریشان ہو؟
8: اس قدر چون چرا میں پریشان کیوں ہو؟ مجھے لگتا تھا کہ مختار کے آتے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسائل کا حل ہونا تو بہت دور ہے, مزید مسئلے کھڑے ہو گئے.
3: میں نے اس سے بھی زیادہ مشکل مسائل دیکھے ہیں. گھبراؤ مت, خدا کے حکم سے سب مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہاں, عبد الرحمن کہاں ہے؟ سلیمان کی طرف چلا گیا؟
8: نہیں ابو اسحاق, وہ عمرہ کرنے گیا ہے.
3: عمرہ؟ وہ بھی ان خوف و خطر کے دنوں میں؟
8: کیا بتاؤں, صرف عمرہ کرنے نہیں گیا, وہ حضرت محمد ابن حنفیہ سے ملنے گیا ہے.
3: کس مقصد سے؟
8: بظاہر وہ ان کے حکم اور دستخط پر شک رکھتا تھا, یقین حاصل کرنے گیا ہے.
3: تعجب ہے,

0: की तरफ आपका बुलावा और ये इंतजार मुझे मौला अली की याद दिला रहा है। जंगे नहरवां के बाद मैंने मौला अली को देखा कि इसी मुकाम पर इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और खुफियों की राह तक रहे थे। बहुत कम लोगों ने उनकी आवाज पर लबैक कहा। इस मलहून कौम का दोगलापन हमेशा ऐसा ही रहेगा। मौला अली की बदुआओं ने नसल दर नसल खुफियों को अंधा और गूंगा बना दिया। कल तक सब के सब तवाब थे, मगर जिस वक्त ये सुना कि शाम का लश्कर वाकई आ गया है और तवाबीन जहाद का हतमी अजम रखते हैं, तो बूढ़ी औरतों की तरह कहीं कोनों में जाके छुप गए।
1: कुम मिन फ़ेयतन क़लील, जो जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान करेगा।
0: अगर आप मसलहत समझें तो मुख्तार के लिए एक पैगाम भेजकर उसे नुखैला में आने की दावत दे दें।
1: वो किस लिए?
0: यहाँ आकर तवाबीन से मिल जाने के लिए। इसमें शक नहीं कि मुख्तार और उसके साथी आ जाएं तो हमारी फौज की ताकत बहुत बढ़ जाएगी।
1: क्या मुख्तार को नहीं मालूम कि हमने नुखैला में पड़ाव डाला है?
0: हाँ, यकीनन जानता है।
1: तो फिर अगर आना चाहता तो अब तक आ चुका होता।
0: आप तो अबू इसहाक को जानते हैं, जरा सा मगरूर है। तवक्को होगी कि आप बजाते खुद उसे आने की दावत दें।
1: तकब्बुर से खुदा की पनाह, मतलब ये कि अगर मैं भी उसे ना बुलाऊं तो मैं भी मगरूर कहलाऊंगा।
0: आप मुबर्रा हैं किब्र व गुरूर से।
1: नहीं रुफाहा, नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। खुदा और शैतान के दरमियान एक बाल बराबर रास्ता है। मैं अब तक ये समझता था कि मुख्तार

तीन अपने शरई वजीफे पर अमल करेंगे। मुझे नहीं मालूम आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर बेहतर होगा कि आप ये जान लीजिए कि शियों ने इराक में बहुत संगीन तावान दिए हैं। जिस हुकूमत ने भी इराक में शियों से दुश्मनी की वो फना हो जाएगी, चाहे वो जुबैरी हो चाहे मरवानी। इन सिक्कों को भी ले जाइए और जरूरतमंदों पर खर्च कीजिए। अली के बाद बहुत से गरीब और जरूरतमंद लोग भूखे रह गए हैं।

है ये गारंटेड नहीं है। मैं कल कहाँ खड़ा होऊंगा जब इमाम आएंगे, कहाँ खड़ा होऊंगा, इमाम के पास मैं कैसे पहुंचूंगा? या तो मैं अपनी प्रैक्टिस को शुरू करूं, डेली प्रैक्टिस करूं और अपने अंदर की चीज़ों को खुद स्कैन करूं और खुदा की बारगाह में दुआ करूं कि परवरदिगार मेरे मामलात को मेरे लिए वाज़े कर, ताकि मैं अपनी तरबियत की तरफ आगे बढ़ूं। क्योंकि ये ना हो जब आवाज़ आए ना बकियतुल्लाह, तो मुझे या तो वो आवाज़ ही ना आए, खुदा ना खास्ता ऐसा भी होगा कि मुझे आवाज़ ना आए, और हो सकता है कि आवाज़ आए लेकिन मैं हरकत ना करूं, मैं घर से ना निकल पाऊं, तो कितना बड़ा सितम होगा कि सारी ज़िंदगी अलजल अलजल करता रहा और मैं इमाम के लिए नहीं निकल पाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मैंने आज प्रैक्टिस नहीं की, मैंने आज ये बोला नहीं चलो ठीक है अभी अभी तो बहुत मामला है, किसी को नहीं पता ज़हूर कब होगा, खुद कोई भी नहीं जानता सिवाय खुदा के, लेकिन मैंने अपने जहन में ये रखा है कि ज़हूर बहुत दूर है। मैंने अपने जहन में तो ये रखा हुआ है ना कि भाई अभी तो बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि ये मेरा दूरी असल में मुझे ज़हूर से दूर कर रही है। अगर मैं कहूँ कि नहीं इमाम का ज़हूर है अभी हो जाएगा, जिस मैंने कल भी अर्ज किया कि ज़हूर एक अमूमी है और एक फर्दी है, शख्सी ज़हूर है, शख्सी ज़हूर तो मैं हो कर सकता हूँ ना, अगर मैं अपनी तरबियत कर लूँ मेरे लिए ज़हूर हो जाएगा, मेरे लिए ज़हूर हो जाएगा। कैसे? मुझे मुझे अपने 24 घंटे में कम से कम मैक्सिमम घंटे इस हालत में गुजारूँ जैसे मैं ज़हूर में जिंदा हूँ। मैं जानता हूँ सख्त है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो करूँ, एक घंटा ऐसा गुजारूँ कि जो मैंने इमाम के ज़हूर में गुजारना है, कैसे गुजारूँगा, क्या करूँगा मैं उस एक घंटे में? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अज़ान मोहतरम को बाहर से तो कोई नहीं आएंगे इमाम के साथ, लोग यहीं से लोग जाएंगे, यहीं से 313, फिर उन 313 के अंदर बहुत सारे लोग ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, कुछ लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, कुछ साथ आएंगे, कुछ नबी भी हैं, लेकिन हैं और अभी भी इमाम के साथ मुख्तलिफ हलके हैं जो इमाम के साथ चल रहे हैं। इमाम की ज़िंदगी आधी ज़िंदगी है, इमाम बे इजाज़े इलाही से ज़िंदा हैं, तुलानी उम्र है, लेकिन इमाम के साथ में लोग आदी हैं, उनको मौत आती है, आदी मौत मरते हैं और फिर कोई और उनकी जगह ले लेता है। इमाम के गिर्द तीन हलके मुख्तलिफ हैं, एक में कुछ 60 हैं, कुछ में 100 कुछ हैं, आखिरी हलका 300 कुछ लोगों का है जिसके गिर्द इमाम, और वो रिजालुल गैब हैं, जिसमें से कुछ तख्ते फौलाद इस्फहान में भी दफन है। कहा जाता है कि यहाँ कुछ रिजालुल गैब दफन है, जिसे पहले भी मैं जब आया था मेरे ख्याल में गालिबन मैंने एक रिजालुल गैब का वाक़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। एक और का जो है वो सईद मेहदी शमसुद्दीन अपनी किताब के अंदर बताते हैं कि नजफ के अंदर एक तालिब इल्म ने कहा कि मदरसे में पढ़ता था, एक और तालिब इल्म था वो सब तालिब इल्मों के काम करता था, खाना पीना जूते पानी लेकर आना, हम क्योंकि पानी वगैरह इतना आसान नहीं था लाना हमाम के लिए, ये सारे काम वो सब, यानी मैं समझने कि जिसको कोई ज़रूरत पड़ती थी उसे आवाज़ देता था और वो आ जाता था। कहते वो आलम दिन कहते हैं मैं रात को उठा इसलिए कि मैं उठूं, तो मैं कहा उसको आवाज़ दूं, तो मैंने देखा उनके कमरे से कुछ नूर रोशनी है और वो शख्स जो जो तालिब इल्म है वो बात कर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है मुझे, या सैदी या सैदी, ए मेरे मौला ए मेरे मौला। तो मैं काफ़ी देर के लिए तो कुछ हैरान हुआ, फिर मैंने उसको जब आवाज़ दी तो एकदम वो रोशनी ख़त्म हो गई और एकदम वो बाहर आया। उन्होंने कहा जी क्या? मैंने कहा किससे बातें कर रहे थे? तो उसने कहा नहीं आपको ज़रूरत है, आपके लिए पानी लेकर आऊँ, मैं ये लेकर आऊँ। कह रहा नहीं नहीं, कहते नहीं मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आपको ज़रूरत है वज़ू के लिए उठे होंगे इसके लिए। कह रहा है पहले रुक जाओ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, अगर नहीं दिया मैं शोर मचाऊँगा, सारे तालिब इल्म उड़ जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा आप शोर नहीं बताएं, मैं आपको बताता हूँ और किसी को बताएं। कहा वक्त का इमाम मेरे पास आया हुआ था, यानी एक वो शख्स के जिसे बाज़ औक़ात कहते ना छोटे काम कर दो ये काम, ऐसे ही वो शख्स इस मकाम पे कि वक्त का इमाम आया हुआ गुफ्तगू कर रहा। और कहता कुछ अरसा गुजरा और कहता उस दिन के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई उस तालिब इल्म से कोई काम कहने की,

कैसे कहता मैं जिससे माँ मिलने आया हूँ? कह रहे वक्त गुजर गया, एक रात वो तालिब इल्म मेरे हुजरे में आया और उसने बताया कि देखो मैं अब जा रहा हूँ और फिर शायद मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा इमाम ने मुझे अपने किसी और काम के लिए बुला लिया है अपने साथ। और बहुत गिरिया किया उसने और फिर चला गया। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम के पास हम ही से लोग उठ के जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा? मैं इस तो आप मैं ये कहता हूँ वो जाए, मैं क्यों नहीं जा रहा? मुझे क्यों नहीं इमाम बुलाते? क्या चीज़ है मेरे अंदर, जो क्या मुश्किल है मेरे अंदर? कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ अपनी ज़ात के अंदर? कहाँ मेरा नफ्स जकड़ा हुआ है? कहाँ मैं इम्तिहान होता है और मैं फेल हो जाता हूँ? हमें नहीं पता। हमारी इतराफ़ में शायद कोई मोमिन हो जो इमाम के साथ उठता बैठता हो, नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ काबे की हुरमत है वहाँ मोमिन की भी वही हुरमत है, कि मोमिन का एहतराम करें। मोमिन को ना ऐसा करें कि पता नहीं कैसा है, कभी उसके जाहिर से उसको ना नापें तोलें कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके पास लिबास नहीं होगा, या उसका नहीं पता खुदा को कितना अजीज़ हो वो शख्स। जाने मोहतरम, मैं अपने उस नाखालिसपन को दूर कर, करबला है इसलिए तकरार वाकई करबला का उस नाखालिसपन को दूर करने के लिए। और ये खुदा का बड़ा लुत्फ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़याम किया उसने उस वक्त के नाखालिसपन को जुदा कर दिया। जो नकाब था मुनाफिकत का इस्लाम के चेहरे पर, इमाम ने आकर उसे उतार दिया। अगर करबला का क़याम ना होता तो ये मुनाफिकत कभी नज़र नहीं आती जो सीनों से चलती हुई आ रही थी। ये इमाम ने कर कयामत तक का रास्ता खींच दिया कि हक ये है बातिल ये है। अब जिसको हक पे चलना है हुसैन का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। और एक लम्हा भी उस तरफ मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, एक लम्हा भी उस तरफ ये नहीं कि उस तरफ खैर थी। नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, असल वजूद पाक नहीं हो सकते अगर इमाम के दुश्मनों से बरात ना करे इंसान। ठीक है बरात करने का तरीका है, ऐलान करने का तरीका है, लेकिन बरात अंदर से है। इसलिए जारते पढ़ते हैं, उनका मकसद यही है, मेरी जंग उनसे जिन्होंने आपसे जंग की, मेरी दुश्मनी उनसे जो आपके दुश्मन है। मगर अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अतात ना करूँ अपने मौला की और अपने इमाम की, तो फिर बाकी तो मेरी सिर्फ बातें ही हैं, कहानियाँ। और मेरा इम्तिहान कहाँ है जाने मोहतरम? अब बोले जी मैं कहीं जगह खड़ा होऊंगा मेरा इम्तिहान होगा, मेरी कहीं जंग होगी इम्तिहान होगा। नहीं, मेरा इम्तिहान यही है, मेरी ज़िंदगी में मेरा इम्तिहान है, मेरे घर में मेरा इम्तिहान है, मेरे ऑफिस में मेरा इम्तिहान है, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मेरा इम्तिहान है। यही मेरा इम्तिहान लिया जाएगा, मुझे चेक किया जाएगा कि इसकी मोमिन की खसलतें कितनी बाकी हैं, कितनी दूसरी खसलतें इसके ऊपर चढ़ती जा रही हैं। यही है डेली के इम्तिहान में, मैं पास हो रहा हूँ निकल रहा हूँ, पास हो रहा हूँ निकल रहा हूँ, पास हो रहा हूँ निकल रहा हूँ। और आखिरी इम्तिहान मुझे नहीं पता मेरा कब है, यहाँ से उतर के अभी आखिरी इम्तिहान होगा या कल होगा नहीं पता। और जिस इम्तिहान की हालत में मैं मरूँगा वही मेरी आखिरी हालत है। मैं हार गया, हार गया, बरज़ख फिर उसी हालत में। और अगर अच्छी हालत में मरा तो फिर अच्छी हालत में बढ़ सकता है। जाने मोहतरम, इसलिए हम अपने आप को, अपने इम्तिहानों को तंग ना हो। बहुत लोग परेशान हैं, मुझे बहुत पब्लिक मैसेज भेजती है। बहरहाल हम में तो खुदा ने शुक्र है कि इंसान से लोग सवाल पूछते हैं, और हमें भी कहा भी गया, असतीत भी कहते हैं कोई सवाल पूछे तो उसे खाली नहीं जाने दो, कुछ ना कुछ उसे बताओ, कोई ना कोई तरीका है, कोई उम्मीद से आदमी आता है। लेकिन ज़िंदगी वाकई बाज़ औक़ात बाज़ लोगों पे बहुत तंग दायरा कर देती है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सेहत हो, चाहे औलाद हो, यही चीज़ें हैं और क्या है इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये सब कुछ थोड़े दिनों का है और ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो ख़ुद ब खुद आप अपने इम्तिहान से बाहर आ जाए। आयतुल्लाह नखूद की इस्फ़ानी के आपकी सलावात उनके दर्जात में इजाफा करूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आयतुल्लाह नखूद की इस्फ़ानी के मैं पहले भी आपके

सामने उनका जिक्र कर चुका हूँ, मशहद में मौला आठवें इमाम के हरम के अंदर दफन है। ये अल्लाह ने उन्हें मकाम अता किया था अहले बैत की मोहब्बत और इबादत के नीचे, कि वो ये कहते थे कि मेरे घर का कोई दरवाज़ा सिर्फ खटखटाए मशहद में और उसकी हाजत वहीं पूरी हो जाएगी, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मकाम था। लेकिन कहते थे क्योंकि मैं मशहद मुकद्दस में रहता हूँ और हरम की हुरमत की वजह से मैं नहीं चाहता कोई मेरे दर पर आए, सब इमाम रज़ा के पास जाए, क्योंकि मैंने भी सब, वो कहते हैं, वहीं से लिया है। वो एक दिन बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं तो उनके शागिर्द आया, कहता आप रो रहे हैं? कहा क्यों? कहा खुदा ने मेरे मर्तबे को बढ़ा दिया है। तो कहा इसमें तो खुश होने की बात है। कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब जो पहला मेरा मर्तबा था, जब लोग मेरे पास आते थे तो मैं दुआ करता था उनकी मुश्किल हट जाती थी, लेकिन अब मुझे पता चला वो जो मुश्किल थी वो अल्लाह का फजल था और मैं दुआ कर कर उस फजल को हटा देता था, उस रहमत को हटा देता था। अज़ीज़ान मोहतरम, जिंदगी की मुश्किलात मुझे बनाने के लिए हैं। अगर सोने को भट्टी में ना डाला जाए, ईंट को अगर भाप या गर्माहट ना दी जाए तो वो मजबूत नहीं बनती, वो फिर एकदम पे ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं तामीर की जा सकती। जितना जलाया जाता है उतना वो मजबूत है, क्योंकि मुझे नहीं पता खुदा मुझसे क्या काम लेना चाहता है। आया मैं चाहता भी हूँ कि खुदा मुझसे कोई काम ले, पहले तो ये सवाल है। ये मैं चाहता हूँ नहीं खुदा मुझसे कोई काम ना ले, मुझे क्या दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे क्या दुनिया में कोई मर रहा है कोई जी रहा है, जुल्म कौन कर रहा है, मजलूम कौन है, कोई परेशान है, मुझे इससे क्या, मेरा कारोबार चलता रहे अल्लाह ताला, बस मेरी तो यही दुआ होगी और क्या। तो फिर ऐसा है तो फिर तो अपने आप से ही मैं कहूँ भाई फिर मैं अपने लिए माजरत चाहता हूँ, तो ऐसा शख्स तो फिर किसी काम का नहीं है जाने वाला, तो ये इंसान नहीं है, यानी इस्लाम नहीं है। इस्लाम की तालीमात क्या हैं? रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान नहीं जो सुबह उठे और उसे उम्मत मुस्लिमा की फिक्र ना हो। मुसलमान नहीं है वो। मुझे तो अपनी कम्युनिटी की पता नहीं फिक्र है कि नहीं है, अपने हमसाये की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, अपनी कम्युनिटी में कोई परेशान है, कोई भूखा है, किसी को और ज़रूरत है, कोई बीमार है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इंसानियत है, इस्लाम इसी का दर्ज दे रहा है। इस्लाम अगर सोसाइटी बेस्ड सोशल बेस्ड है तो इस्लाम का हदफ ही यही है कि माशरे में हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है, मगर हम भूल गए हज़रत सईदा सलामुल्लाह अलैहा कि जो रात को अपने हमसायों के लिए दुआएं करती थी। क्या मैं दुआ में अपने हमसायों का नाम लेता हूँ, अपने दोस्तों का नाम लेता हूँ? नहीं है मेरे पास टाइम। असल मैं दुआ भी करता हूँ कि नहीं करता? नमाज पढ़ी बस, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बस निकल गए। जबकि हर वाजिब नमाज के बाद एक दुआ मुस्तजाब है, एक दुआ मैं करता हूँ, नहीं करता जाने मतलब। और मैं इस हालत में जो मेरी हालत है, मैं अपने आप को इमाम के सामने क्या पेश करूँगा कि करबला सारी ज़िंदगी सुनता रहा और मैं किस तरह आया? अच्छा तुम वक्त का जो इमाम है उनके ऊपर जो मुश्किलें और मुसीबतें हैं वो सारे इमामों से ज़्यादा हैं, याद रखें। क्यों? क्योंकि हर इमाम की ज़िंदगी एक महदूद थी। 63, 53, 25, इतनी एजेस थी, मुश्किलात बहुत थी, झेली, मुश्किलात पे तहम्मुल किया, सब्र किया, मगर ज़ाहरी दुनिया से चले गए। यहाँ 1100 साल से ज़्यादा हो गया है, कितना सब्र और तहम्मुल है इमाम के पास। और जितनी हम पे मुश्किलें पड़ती हैं सब पर इमाम को तहम्मुल करना पड़ता है। हाँ, मुझ पर तकलीफ़ होती है, आप पे तकलीफ़ हो रही है, इंसानियत के कत्ल हो रहे हैं, मुसलमान मुश्किलात में हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, भूख अफलास में इंसानियत रह रही है, ये सारी तकलीफ़ें इमाम तहम्मुल कर रहे हैं। बहुत सब्र है, यानी हम नहीं पहुंच सकते, यानी हम थोड़ा सा अपने इमाम को महसूस करें दरके कि इमाम किस मुश्किल के अंदर है और मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ।

मुझे फ़र्क ही पड़ता है इमाम आए नहीं आए, मेरी तो ज़िंदगी गुजर रही है, मैं तो अभी डिग्री करूँगा या अभी जॉब करूँगा, फिर मेरा बिज़नेस होगा, फिर मेरा ये होगा, फिर मेरा वो, मेरी तो रेटिंग कैलकुलेशन यही है 5 साल की। इमाम के तो लिए तो मैं सोच नहीं रहा कि मुझे अब अगर इमाम का कल ज़रूर होता है तो जब इमाम को हुकूमत बनानी पड़ेगी तो मैं इमाम की हुकूमत में कोई काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कोई मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा प्रोफेशन, एक्स्ट्रा हुनर, कोई ऐसी चीज़ है कि जो मौला को दूँ। तो कुछ हम अब जब अपने दोस्तों से कहते हैं तो कहते हैं बस वो हम तो मौला की घोड़ों की नौकरी कर लेंगे, तो घोड़े पकड़ेंगे कभी ज़िंदगी में, घोड़े पे बैठे हैं कभी ज़िंदगी में, घोड़ा चला के देखा है कभी नहीं। अरे हम हर जगह शॉर्टकट के चक्कर में, वो भी नहीं आता हमें, तो मतलब आप खुद सोचे ना कि मैं फिर मैं मेरा दावा कैसा दावा है ये, मैं अपना दावा कर रहा हूँ, मेरा क्या, मैं कैसे कह रहा हूँ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं कैसा मुंतज़िर हूँ, और मैं हर वक्त करबला में ये कि वो इमाम के साथ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, ऐसे थे जिन्होंने कहा कि 70 दफ़ा उठाया जाए, 70 दफ़ा मारा जाए, हम मौला आपको नहीं छोड़ेंगे, ये क्यों सुनते हैं हम, ताकि मैं भी कोशिश करूँ उस रास्ते पर चलूँ, उस रास्ते पर जान दूँ अपनी, उन शोहदा की तरह के जिन्होंने वाकई इस दौर के अंदर भी दिखाया कि यही रास्ता शहीद-ए-शोहदा का कामयाबी का रास्ता है, यही रास्ता है। कितने शहीद आजकल के दौर के अंदर भी या गुज़िश्ता सालों के अंदर भी ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में यही कहा, या मौला ज़ियारत या शहादत, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, और ज़िंदगियों को ऐसे गुजारा। ऐसे ऐसे शहीद थे कि जो वाकई अपने मरने से पहले बता देते थे। एक शहीद जो कि इस्फहान का था, जब आखिरी दफ़ा अपनी ज़ौजा से मिलने आया तो कहा मेरे पाँव को गौर से देखो, कहा क्यों, कहा बस देखो, जब शहीद हुआ तो बदन के इतने टुकड़े हो गए कि कोई चीज़ सालिम नहीं थी, सिर्फ पाँव सालिम थे, और जब पाँव आए तो देखने के लिए कि किसके हैं, तो फिर ज़ौजा को समझ में आया कि क्यों मुझे कह के गया था कि मेरे पाँव को देखो, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि बदन किसका है। ये मारिफत थी, मारिफत रखते थे, क्यों, क्योंकि शहीद-ए-शोहदा के रास्ते पर थे। ये रास्ता ऐसा है जाने में, ये रास्ता मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मजलिस में है, या मेरी आम जिंदगी में भी है रास्ता। तो बहरहाल मैं बहरहाल वही है, मौलाना साहब टेंशन देने आ जाते हैं हम लोगों को, भाई क्या करें, मुझे समझ में नहीं आता और क्या दूँ, मैं अपने आप को टेंशन देता हूँ। हकीकत यही है जाने मतलब मजलिस यही है कि मैं यहाँ से उठूँ, मैं हुसैनी बन जाऊँ, हुसैनी बनूँ, अपनी ज़िंदगी को इस रास्ते पर, चाहे आप कुछ भी करते हो, इस्लाम मना तो नहीं करता, बिजनेस से मना नहीं करता, काम से मना नहीं करता, खाने पीने से इस्लाम तो कहीं नहीं मना कर रहा आपको, लेकिन आपके वजूद को मांगता है कि आपका अंदर जो है वो अल्लाह की तरफ तवज्जो करे। ज़ाहिर जब अंदर का तवज्जो खुदा की तरफ होगा तो ज़ाहिर खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। अंदर तो दे पहले खुदा को, ज़ाहिर में दाढ़ी भी है, सब कुछ है, काले कपड़े पहन लिए, यूं यूं भी मिलते हैं, हाथ भी यूं यूं करते हैं, ज़रा सी 4 नमाज़ें ज़्यादा पढ़ ली तो हाथ यूँ मिलाते हैं कि बहुत बड़े वो मुत्तकी परहेजगार हैं, नहीं मैं खाना भी कम खाता हूँ जी मैं तो परहेजगार, इस ज़ाहिर, लेकिन अंदर अगर वैसा हो, अंदर इंसान मुतवज्जो ही ना हो खुदा की तरफ, एक शब की तन्हाई में कभी एक आँख से आंसू न टपका हो खुदा के लिए, खौफ है खुदा से, तो फिर मैं क्या हूँ, मैं कम से कम कुछ तो मेरा बातिन खड़खड़ाए लड़खड़ाए खुदा की बारगाह में, कहीं तो खड़ा हूँ कि मैं मौला कायनात का मानने वाला हूँ कि जो इबादत में खड़े होते थे तो ऐसे महव होते थे कि टांगों से तीर निकल जाते थे लेकिन पता नहीं चलता था, मानी इबादत ऐसी, कुछ तो कभी तो कहीं तो कुरान की तिलावत हो, कुछ तो हो मेरी ज़िंदगी में, कभी तो मुझे लगे कुरान मुझसे बातें कर रहा है, कब लगेगा, जब मैं दुनिया चला जाऊंगा, जाने वो सब कुछ इसी दुनिया के लिए है। तो मैं बहरहाल अपनी ज़िंदगी में करबला से यही तर्स लूँ, जाने मोहतरम करबला ने यही तो रास्ता दिया कि आओ हुसैनी बन जाओ और अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद को खुदा के लिए कुर्बान कर दो, या फिर ज़ैनबी बन जाओ कि जब तक जिंदा रहो इस काम की तबलीग करते रहो। यही तो किया हज़रत